FM 101 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी भदरवा से बोल रहे हैं। सामिन, आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ महीने की 2 तारीख, बामुताबिक 23 जून 2026 ईस्वी। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 7:56 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की मजलिस का आगाज़ होता है।

ये आकाशवाणी भदरवाह है। साविन अब से थोड़ी ही देर में यानी 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 पर उर्दू खबरनामा आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रिले का ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के

0: सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्य

0: में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। यह शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।

0: उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिग्रहण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा, द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट हैज बीन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ फास्ट ग्रोइंग क्रेडिबल एंड रिलायबल ग्लोबल पावर। President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे, हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: मिस्टर मोदी सेड Nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
2: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta, balki middle class ka bhi itna fayda hota hai. क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri.

0: heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में चार ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। चार मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज अब नए हुरमुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के जेरे एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुजश्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियां भरोसे, इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तई अहद की बदौलत हासिल हुई हैं।
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तज़किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखने के तई भारत की पुख्ता अज़्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फलसफा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल रहा है। सरकार के गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी के फरोख और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं जिससे एक नया बड़ा मुतवस्सित तबका उभरा है और इक्तिसादी सरगर्मियों को तकवीत मिली है।
2: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: सदर जमहूर

0: द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अता करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में अता किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65 पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। अवार्ड्स हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती, फिल्म गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल योम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मज़कूरा अवार्ड्स गैर मामूली काम के एतराफ में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत व सनत, अदविया, अदब व तालीम, खेल, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दी शोबों में ये अवार्ड्स अता किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्मा की सीरीज के तहत खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड्स याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किया जाता है।
2: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 पर सुबह 9:10 से सुना जा सकेगा। इसके अलावा आकाशवाणी के ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तियाब रहेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ में पेश आए आग लगने के हादसे के तनाजुर में रियासती हुकूमत के 4 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है। मस्कूरा हादसे में 15 तलबा हलाक हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इनमें से 4 अफराद को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आग बुझाने वाले महकमे और बिजली महकमे के 4 अहलकारों को मुअत्तिल कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजदों मुलजिमों और दीगर कसूरवार अफराद के खिलाफ BNS और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट के मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। आग लगने के इस वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और खसूसी जांच टीम बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कल सपहर आग लगने के इस सानहा में कम अज कम 15 अफराद की मौत हो गई थी जिनमें बेशतर 16 से लेकर 25 साल की उम्र के तलबा थे। 9 तलबा जख्मी हुए जिन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दाखिल किया गया है। बेशतर अमवात दम घुटने की वजह से हुई। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत की कौमी जरई इमदाद बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड के नीलामी पोर्टल का आगाज करेंगे। नीलामी के अमल में शफाफियत को मुस्तहकम बनाने और कामकाज को सहल बनाने की समत ये एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मस्कूरा पोर्टल से नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को मजबूत करने और किसानों, मेंबर इदारों और मुतालिका फरीकों के मफाद में नेफेड के मजमुई कामकाज को वसत देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम हो सकेगा। बाद में जनाब अमित शाह नेफेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में नेफेड अपनी सरगर्मियों और पेशरफ्त के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश करेगी। नेफेड का मुस्तकबिल का खाका भी पेश किया जाएगा। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे की वजारत ने कहा है कि यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी और सल्फर की खेप लाने वाले चार मालबरदार बहरी जहाजों ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया और अब ये मुल्क में अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह और गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि कीमियावी खाद की इस दरामद से मौजूदा ज़रई ज़रूरियात की तकमील को मजीद तकवीयत मिलेगी। वजारत ने ये जानकारी दी है कि मुल्क में कीमियावी खाद का मजमूई स्टॉक 196 लाख टन है, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 168 लाख टन था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ कल नई दिल्ली में बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने में पेशरफ समेत दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों के मीटिंग के मौके पर यह बातचीत हुई। जनाब डोभाल ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि मुस्तहकम और तामीरी दोतरफा ताल्लुकात से तरफैन के दरमियान बाहमी एतमाद और बेहतर मुफाहमत कायम करने में मदद मिलेगी। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलुकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुकाम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तहकम है और वो जेरे इलाज हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस हादसे में होने वाले जानों के जिया पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोहा में वाकई भारतीय सिफारत खाना इस हादसे से मुतासिर होने वाले भारतीय शहरियों के खानदान की मदद के लिए कतरी हुकाम के साथ करीबी इश्तराक से काम कर रहा है और उनके राबते में है। कतर के सबसे बड़े गैस के मरकज में हुए धमाके के बाद कम अज कम 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने बताया कि दोहा में रास लफान जोन में वाकई शहर के अहम रकीक कुदरती गैस एलएनजी की प्रोसेसिंग के मकाम पर ये तकनीकी हादसा पेश आया। कतर के तवानाई के वजीर ने कहा कि इस धमाके से मुल्क की बरामदात मुतासिर नहीं होंगी। यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। इसमें सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। मर्दों के सिंगल जुमरे के पहले राउंड में आलमी नंबर 14 लक्ष्य सेन का मुकाबला बेल्जियम के जूलियन काराजी से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू का सामना करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मीनाक्षी की जोड़ी इंडोनेशिया के वीरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। मर्दों के एफआईएच हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। चीन के हुलुम्बियर में मुनक्किदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत एक काबिल भरोसा मईशत के तौर पर दुनिया में तेजी से उभर रहा है। पिछले 12 बरसों में शुरू की गई फलाही स्कीमों से आवाम को फायदा पहुंचा है। वजीर खारजा और डॉक्टर एजय शंकर ने मंगोलिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तालीम सकाफत और कई तरक्याती प्रोजेक्टों समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। अजीत डोभाल की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में नई टेक्नोलॉजी के रोल पर हुई बातचीत, ये खबर भी आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज अब नए हुरमुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुकाम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
5: FM 101 MHz पर ट्यून किया है आपने आकाशवाणी भदरवा। श्रोताओं 8:45 हुए हैं। आइए आज के दिन की शुरुआत ईश्वर की आराधना से करें। प्रस्तुत है मधुर भजन जो आपके तन मन को नई ऊर्जा और आत्मिक शांति प्रदान करेंगे। तो पेश है आज का भक्ति संगीत का विशेष कार्यक्रम।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
0: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी भदरवाह से बोल रहे हैं FM 101 MHz पर। श्रोताओं, 9:05 हुए हैं। अब पेश है रोजगार खबरनामा। सशस्त्र सीमा बल की एक इतला के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से SSA यानी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क की आसामियों के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। आसामियों की कुल तादाद 227 है, जिसमें सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के उम्मीदवारों के लिए 76 आसामियाँ, आर्म्ड फोर्स क्लैरिकल सर्विसेज के लिए 42 आसामियाँ, रेलवे बोर्ड सेक्रेटरेट क्लैरिकल सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए 19 आसामियाँ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के लिए 24 आसामियाँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए 6 आसामियाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए 12 आसामियाँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लिए 4 आसामियाँ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए 8 आसामियाँ, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट के लिए 8 आसामियाँ और ऑफिसर डेवलपमेंट कमीशन के लिए 28 आसामियाँ दरकार हैं। तालीमी काबिलियत में उम्मीदवार के पास किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री का होना लाजमी है और इसके साथ साथ उम्मीदवार का रेलेवेंट फील्ड में 3 साल का तजुर्बा होना भी लाजमी है। उम्र की हद में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 18 से 32 साल रखी गई है, जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में 5 साल की छूट और डिफेंस पर्सनल के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में 3 साल से 8 साल तक की छूट रखी गई है। उम्मीदवारों को दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवानी होंगी। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 26 जून 2026 मुकर्रर है। मजीद जानकारी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सशस्त्र सीमा बल की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है ssc.gov.in। वेबसाइट एक बार फिर से सुन लीजिए, ssc.gov.in। ये था रोजगार खबरनामा।

ये आकाशवाणी का भद्रवाह स्टेशन है, FM 101 MHz पर। श्रोताओं, 9:08 हुए हैं। पेश है अब से लेकर रात 10 बजे तक रिले व नशर किए जाने वाले प्रोग्रामों का खुलासा।

प्रोग्राम शाम में गजल आप हमारे स्टूडियो से समाप्त करेंगे शाम 6:30 पर। शाम 7:00 हालात वाकात पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन 7:30 पर कश्मीरी में खबरें 7:40 पर उर्दू में खबरें और तबसरा और रात 8:00 प्रोग्राम वादी की आवाज़ आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा।

8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी।

0: श्रोताओं, ये था खुलासा हमारे अब से आगे यानी रात 10 बजे तक रिले व नशर होने वाले प्रोग्रामों का। ये आकाशवाणी भदरवा है FM 101 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कैलाश खेर का गाया ये शौर्य गीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भदरवाह FM 101 MHz पर। श्रोताओं, 9:20 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जम्मू से डोगरी में खबरें रिले की जाएंगी। रिले का जरा सा इंतजार कीजिए।

0: ए आकाशवाणी जम्मू ऐ बडलै खबरें च तुंदा स्वागत। पैहले खास खास खबरें कन्नै मैं कुणाल श्रीवत्स। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आखेआ ऐ कि टीचरें गी बदलदे समें दे कन्नै नमीं सोच ते नमें तौर तरीकें गी अपनाइयै विद्यार्थियें अंदर उम्र भर कम्म औने आह्ली सलाहियत विकसित करनी लोड़चदी। केंद्री पंचैती राज मंत्रालय आसेआ अज्ज श्रीनगर च इक क्षेत्री कार्यशाला दा सरिस्ता कीता जा'रदा ऐ जेह्दा विशे सार ऐ सेवा राएं समृद्धि। एससीओ वुशु चैंपियनशिप लेई चीन रवाना होने कोला पैहले भारती वुशु टीम कल मुक्खमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें गी मिली। जम्मू कश्मीर थमां समाज सेवी ब्रिजलाल भट्ट होरें गी अज्ज राष्ट्रपति हुंदे आसेआ पद्म श्री सम्मान भेंट कीता जाग ते जम्मू कश्मीर दे घरें मकानें ते शहरी विकास सरबंधी मैह्कमे गी अपनी डिजिटल शासन आह्ली पैह्लकदमी लेई दौं प्रतिष्ठित स्काच राष्ट्रीय पुरस्कार हासल होए न। हुन खबरें दी तफसील कन्नै जगमोहन शर्मा।
1: शुक्रिया कुणाल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आखेआ जे टीचरें गी बदलदे समें दे कन्नै नमीं सोच ते नमें तौर तरीकें गी अपनांदे होई विद्यार्थियें च उम्र भर कम्म औने आह्ले हुनर विकसित करने पर ध्यान देना लोड़चदा की जे मजूदा दौर च इक अध्यापक दी भूमिका छड़ा सिलेबस खत्म करने दी नेईं रही गेदी ऐ। कल श्रीनगर च 10वीं ते 12वीं जमात दे मतेहानें च शानदार कारकरदगी दस्सने आह्ले विद्यार्थियें गी सम्मानित करदे होई आयोजित इक कार्यक्रम च बोलदे होई एलजी होरें आखेआ जे असल काबलियत छड़ी मते नंबर हासल करने या मैडल जित्तने च नेईं सगुआं नमीं सोच नमियें काडें गी विकसित करने ते चुनौतियें दा हल तुप्पी कड्ढने च ऐ। उनें आखेआ जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ते आधुनिक तकनीकें दे इस्तेमाल कन्नै क्लासें दा स्वरूप भी बदला करदा ऐ ते कम्म करने आह्लियें होरनें थाहरें दा भी, जिसलै जे नमें मौकें दे कन्नो कन्नी नमियां चुनौतियां भी सामने आवा करदियां न।
2: आने वाले नजदीकी भविष्य में क्लासरूम और वर्क प्लेस दोनों में बड़े ही तीव्र परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जहाँ एक तरफ पुराने जॉब्स इररिलेवेंट हो जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ नए जॉब्स के अवसर असीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे। मैं मानता हूँ कि इस अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर में स्टूडेंट्स को और ब्रिलियंट तथा और साहसी बनना हो। मेरा मानना है कि ब्रिलियंस केवल नंबर्स या मेडल से ही नहीं मापे जा सकते, बल्कि फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग और समाधान की कल्पना से भी मेजर किए जा सकते।
1: केंद्री पंचायती राज मंत्रालय आसेआ अज्ज श्रीनगर च सेवा राएं समृद्धि दी भावना कन्नै पंचैत दी अगुवाई च सेवा वितरण विशे सार पर इक क्षेत्रीय कार्यशाला दा आयोजन कीता जाग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होर इस कार्यशाला दा उद्घाटन करगन जेह्दा मकसद पंचैती राज संस्थानें दी अगुवाई च नमें ढंगै कन्नै सेवा देने दे माडल राएं जमीनी सतह पर शासन गी मजबूत करना ऐ। एह्दे च सरकारी अधिकारिएं, पंचैतें ते कर्मचारिएं ते ग्राम सतह दे उद्यमिएं दे कन्नो कन्नी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड ते उत्तर प्रदेश दे प्रतिनिधि भी हिस्सा लै करदे न। कार्यशाला दे हिस्से दे तौरा पर शिरकत करने आले राज्यें दे बधिया प्रदर्शन करने आली ग्राम पंचायतें ते जन सेवा केंद्रें गी भी सम्मानित कीता जाग। द्रोणाचार्य पुरस्कार कन्नै सम्मानित भारत दे वुशु दे मुक्ख राष्ट्रीय कोच कुलदीप भंडू हुंदी अगुवाई च भारतीय वुशु टीम चीन रवाना होने कोला पैहले कल श्रीनगर च मुक्खमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें गी मिली। एह् टीम चीन दे हुबेई च आयोजित होआ'रदी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ वुशु चैंपियनशिप च हिस्सा लैग ते मगरा बीजिंग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी च इक म्हीने दे सिखलाई कार्यक्रम च बी शामल होग। मुक्खमंत्री होरें टीम गी शुभकामना दित्तियां ते उंदी शानदार कारकरदगी ते नमियां उपलब्धियें गित्तै भरोसा जताया। उनें जम्मू कश्मीर च वुशु गी बढ़ावा देने लेई सरकार दी तरफा हर चाली दे सहयोग ते समर्थन दा भी यकीन दोआया। जम्मू कश्मीर दे दौरे पर आए दे कांग्रेस दे सांसद ते विदेशी मामले सरबंधी संसद दी स्थाई कमेटी दे अध्यक्ष शशि थरूर होरें राष्ट्र दी रक्षा च बीएसएफ कर्मियें दी भूमिका दी सराहना कीती ऐ। उनें आखेआ जे साढ़े बन्ने पर बीएसएफ दे जवानें दी निष्ठा ते समर्पण भाव सराहने जोग ऐ ते हर इक भारतीय गी बन्ने पर जाइयै उंदे इस जज्बे गी आपूं महसूसना लोड़चदा। शशि थरूर होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर दे कुदरती नजारें दा छलैपा इक कोला बधियै इक शानदार ऐ ते इत्थें सैलसफा गी होर मता बढ़ावा दिता जाना लोड़चदा। उनें मेद प्रकट कीती जे इत्थूं दा रमानदारी आला माहौल मते शा मते सैलानियें गी घाटी आली बक्खी आकर्षित करोग। अपने दौरे दौरान मीडिया कर्मियों कन्ने गल करदे होई शशि थरूर होरें आख्या,
3: बीएसएफ के जवान जो हमारे देश के लिए करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, ये सब तो बहुत मेरे ख्याल में ये सब देखना चाहिए। हर भारतीय नागरिक जब मौका मिलेगा बॉर्डर जाके देखने चाहिए कि क्या क्या कर रहे हैं हमारे, बहुत अच्छा लगता है। इस राज्य का जो सुंदरता है, क्या कहूँ, मनोरंजन से लोग आते हैं यहाँ, और हम भी चाहते हैं कि टूरिज्म भी बढ़ जाए, कि लोग आते जाते हैं यहाँ। ऐसा वातावरण होने चाहिए कश्मीर में कि सब कुछ अच्छा चले और हमारे देशवासियों आते।
1: आकाशवाणी जम्मू दे प्रादेशिक समाचार एकांश ने पहाड़ी भाषा लई कैजुअल न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर ते स्टेनोग्राफर दे पैनल च शामिल करने लई जम्मू कश्मीर दे रौह्ने आले 21-50 बरे तोड़ी दी उम्री दे इच्छुक मेदवारें कोला आवेदन मंगे न। कैजुअल न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर लई घट्टो घट्ट योग्यता, कुसै मानता हासल यूनिवर्सिटी थमां ग्रैजुएशन ते पहाड़ी भाषा दी शैल जानकारी दा होना ऐ। न्यूज़ रीडर लई प्रसारण दे मुआफक खरी आवाज दा होना भी जरूरी ऐ। स्टेनोग्राफर लई घट्टो घट्ट योग्यता, कुसै मानता हासल एजुकेशन बोर्ड थमां 12वीं पास होना ते पहाड़ी भाषा च खरी जानकारी दा होना जरूरी ऐ। कन्नै गै कंप्यूटर पर पहाड़ी भाषा च टाइपिंग स्पीड 25-40 लफज फी मिंट होनी लोड़ती। आवेदन दी हार्ड कॉपी हेड ऑफ न्यूज रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी 35 जम्मू पिनकोड 1800001 दे पते पर दस्ती जमा करवानी होग। एदे कन्नै सब्बै जरूरी दस्तावेज ते आवेदन शुल्क भी होना लोड़ता। सामान्य श्रेणी दे मेदवारें लई एह शुल्क 355 रुपये ते एससी एसटी ओबीसी मेदवारें लई 265 रुपये 18% जीएसटी सने ऐ। एह शुल्क प्रसार भारती आकाशवाणी जम्मू दे बैंक खाता नंबर 1058238718126 एसबीआई मेन ब्रांच हरी मार्केट जम्मू च ऑनलाइन जमा कीता जाई सकदा ऐ। आईएफएससी कोड है SBIN 00006 57। शुल्क जमा कराने दे बाद मिले दे स्क्रीन शॉट दा प्रिंट आउट या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी आवेदन दे कन्ने जरूर लाना होग। आवेदन करने दी खीरी तरीक 19 जुलाई 2026 रखी गई है। मती जानकारी लेई टेलीफोन नंबर 0191254-6658 ते 96971772041 पर लैती जाई सकती है। तफसील इश्तिहार ते आवेदन फार्म साड़ी वैबसाइट www.newsonair.gov.in पर होम पेज दे अखीरे च वैकेंसीज आइकन पर उपलब्ध है। एह खबरां साड़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एदे इलावा तुस एह खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे हो। एह खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू परा सुनारदे हो। बाकी दियां खबरें कन्ने कुणाल श्रीवत्स।
0: जम्मू कश्मीर दे मन्ने परमन्ने दे समाजी कार्यकर्ता ब्रिजलाल भट्ट होरें गी अज्ज संझा नमीं दिल्ली च राष्ट्रपति भवन च दुए गेड़ आले नागरिक अलंकरण समारोह च राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुंदे आसेआ प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार हासल होग। इस समारोह दौरान राष्ट्रपति होर मुल्ख भरै दिए मन्नी परमन्नी दिए हस्तियें गी 65 पद्म पुरस्कार देंगन, जिंदे च 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण ते 56 पद्म श्री पुरस्कार शामल न। समारोह शा पहले अपनी खुशी जाहिर करदे होई भट्ट होरें आखिया जे उनेंगी बड़ा मता गर्व महसूस होआरदा है ते ए सम्मान इस गल्ले दी तस्दीक करदा है जे ओ समाज दी सेवा करने आस्ते सही बत्तै पर चलारदे न।
4: मैं इसको इस रूप में लेता हूं, एक रिकॉग्निशन मिली ताकि मैं बूस्ट हो जाए, मैं इससे ज्यादा काम करूं, या मेरे साथी जो टीम वहां काम करती है स्पेशली यूथ, जब उनको ये मैसेज गई और ये जो सम्मान मुझे मिला उनमें एक फिर से ये जो रिजुनरेट प्रोसेस करते हैं, तो डबल स्ट्रेंथ से हमको काम करना है और ये सम्मान मिलने से मेरा चैलेंज और बढ़ गया। दूसरी चीज मैं ये समझता हूं, मुझे सम्मानित किया गया इसका मतलब ये है जो रास्ता मैंने अपनाया, जिस रास्ते में मैं चलता हूं वो सही।
0: जम्मू कश्मीर आवास ते शहरी विकास विभाग ने अपनी डिजिटल शासन आली पहलकदमी आस्ते 2 प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जेदे च सुन्ने ते चांदी दे नाम शामिल न। ए पुरस्कार नमी दिल्ली च आटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन सिस्टम ते जम्मू कश्मीर गतिशक्ति जीआईएस एसेट मैपिंग सिस्टम लई दिते गए न। कमिश्नर सचिव मनदीप कौर हुंदे मार्गदर्शन च विकसित कीती गई इन्हें परियोजनाएं ने उन्नत तकनीक दे राएं पारदर्शिता, कुशलता ते नागरिक सेवाएं च सुधार कीता है।
1: ते अखीर च खास खबरां इक वारी परतीए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और यहां के जो टीचरें की बदलते समय दे करने नवी सोच ते नवे तौर तरीके की अपनाइए विद्यार्थियों अंदर उम्र पर काम आने वाली सलाहियत विकसित करनी लोड़ थी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आसिया अज श्रीनगर च एक क्षेत्रीय कार्यशाला का सरिस्ता किया जा रहा है जिसका विषय सार है सेवा राय समृद्धि। एससीओ वुशु चैंपियनशिप लिए चीन रवाना होने को पहले भारतीय वुशु टीम कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें गी मिली। जम्मू कश्मीर थमां समाज सेवी ब्रिजलाल भट्ट होरें गी अज राष्ट्रपति हुंदे आसिया पद्मश्री सम्मान भेंट किया जाग ते जम्मू कश्मीर के घरें मकानें ते शहरी विकास सरबंधी महकमे की अपनी डिजिटल शासन आली पहलकदमी लिए दौं प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल होए न। एदे कन्ने गै खबरें दा ए बुलेटिन समाप्त होआ।
5: एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़ पर ट्यून किया है आपने आकाशवाणी भदरवा। 9:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कश्मीरी मौसिकी। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं रसूल मीर के कलाम से जिसे गाया है दीपाली वातल ने।

ये थे तौकीर अली। प्रोग्राम के आखिर पर समाप्त कीजिए राशिदा अख्तर को। कलाम है दिलसोज का।

FM 101 MHz पर हम आकाशवाणी भदरवाह से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 10 बजने वाले हैं। अगले प्रोग्राम विविध भारती सर्विस मुंबई से रिले किए जाएंगे, जिन्हें आप सुन सकेंगे शाम 5 बजे तक।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवें आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूँगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर
1: अच्छा।
2: है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अबाउट 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गाँवों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज़्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
1: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
2: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफ़ी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज़्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को ख़राब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
2: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था

0: कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं,
1: लक्षण
0: लक्षण
1: हाँ
0: क्या
1: क्या
0: होते
1: है
0: हैं।
1: और
0: तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज़ हो सकती है या प्री डायबिटीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये दो तीन लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
1: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
0: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज़ है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वज़न कितना है। अगर वज़न हमारा बढ़ रहा है या ज़्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पर डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज़्यादा हो तो देर इज़ अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है। अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसानदेह दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हैं हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफ़ी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है। अब ये सारे जो टेस्ट हैं सिंपल टेस्ट हैं, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूँ कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज़ टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खास तौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल,
1: जी
0: चौदह
1: जी
0: पंद्रह साल मैंने वहां बिताया,
1: अच्छा
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ ही पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी काफी साल। फिर 14 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे।
1: जी जी
0: तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है
0: ये जो
1: मेरा,
0: देश है मेरा, ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद
1: क्या
0: है।
1: बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहां पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहाँ पे, तीन तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP करके टेस्ट होते हैं जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया वापस।
0: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, वो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन देती है कि हम एक दवाई लिख के दें। तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5 to 10% भी वजन कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5 से 10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाई है, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में दो और दवाइयां अभी अप्रूव हुई हैं, एक एक साल पहले हुई थी और कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज्यादा दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल हैं दवाइयां, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है सुझाव कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयाँ थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूँ कि वेट लॉस करो।

0: अगर वे वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
0: हाँ, मैं बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी,
1: जी
0: उन्होंने 12 12 घंटे काम कर रहे हैं, चौदह
1: जी
0: घंटे
1: पढ़ाई
0: काम
1: कर
0: कर रहे
1: रहे
0: हैं,
1: हैं वो।
0: स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूँ, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा,
1: जी,
0: एंड फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है,
1: जंक फूड
0: जंक
1: खा
0: फूड
1: रहे
0: खा
1: हैं।
0: लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सब से भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे,
1: जी
0: स्विगी
1: जी
0: ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर
1: यस
0: लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और
1: हाँ
0: काम खत्म। तो
1: बिल्कुल
0: ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम। द फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती हैं।
1: जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
0: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, आप 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2 से 3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है।
1: जी
0: ये मैं डायबिटीज़ वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें, हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है। एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए, वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20 से 30 गुना ज्यादा होती है।
1: ओ
0: तो लिवर, फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा।
1: जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को?
0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: आई लाइक, थोड़ी
1: जी
0: बीट सोनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना
1: क्या बात है,
0: मुझे
1: फिल्म का
0: पसंद
1: नाम
0: है।
1: भी सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है, सुनते हैं यही गाना, और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि
0: सही,
1: अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफ़ी हद तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इट इज़ इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7 5.

0: क्रिएट होता है. मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका एच बी वन सी 5.6 5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है. इंडिया में फॉर सम रीजन ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा एच बी वन सी प्री डायबिटिक रेंज में है, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है. तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है. नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई. नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है. तो अगर आप देखें आजकल के जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है.
1: ओके,
0: सो इट वर्क्स बोथ वेज.
1: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
0: ना, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है, खाने पे ध्यान दो. हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक. कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है. तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा. एक्सरसाइज करो. जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो. बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो? और सबका सवाल, आधे लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं. तो वॉक इज नॉट गुड. अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए. आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए. हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े. अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को. तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए.
1: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा.
0: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके 2 जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है. और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते. मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं. अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है. और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में. तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है. इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए. हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम. इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं.
1: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डायटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें. इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें. और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब.
0: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं. अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे. सुनते हैं यही गाना.

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा है मुझे है, किसी ने लिखा है मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है, IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रॉबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है। तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है।
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूं तो बोलते पेट दर्द कर रहा है,
0: जी
1: या
0: जी
1: वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज़्यादा लो, फल फ्रूट ज़्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी। हर एक बीमारी को अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हैवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ और लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है।
0: जी, तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो। सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। खाने के बाद टहलिए थोड़ा, 10-15 मिनट तक खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
0: जी जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को,
0: जी।
1: जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है। खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
0: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूं, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
1: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं, जैसे IBS बोला मैंने पहले,
0: जी, जी, जी।
1: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
0: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
1: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से ही शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती हैं, जैसे एक एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है। तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है, माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
0: दोनों एक दूसरे के पूरक है और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
1: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया,
0: चल छैया छैया, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज़्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है किसी किसी को, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्जॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए। तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी हैं। है हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे अपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा ज़रूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूँ कि एक बार आपका कोर्स ख़त्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
0: जी।
1: सो दैट इज़ कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज़ प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
0: जी, लेकिन वो आदत न डाल लें, ये गड़बड़
1: करेक्ट।
0: है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियाँ होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियाँ, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
1: हाँ, अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होता रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या
0: जी
1: है।
0: जी
1: इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज़्यादा देखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर डायबिटीज़ बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो
0: जी
1: डायबिटीज़

0: कोई पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपेरिसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो।
1: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यह है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।

0: कार्यक्रम का पहला गीत आवाज नरेंद्र चंचल की थी। फिल्म का नाम था बॉबी। इस गीत को लिखा था राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओडली।

0: चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में संत मीराबाई का भजन। इसे संगीत में ढाला है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और रचना संत मीराबाई की थी,
1: जिनकी बांसुरी की मधुर

0: को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: बेगम अख्तर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं एक शास्त्रीय रचना। आप सुन रहे हैं इनकी गाई ये कजरी।

0: बेगम अख्तर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये कजरी। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जगजीत सिंह की आवाज है और संत कबीर का ये भक्ति पद है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी बाबू गव्वाल की आवाज में ये गव्वाली। इसे लिखा है सबा अफगानी ने।
4: ये हुस्न वाले भी कैसा कमा

0: जानी बाबू कव्वाल और उनके हमनवा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में फिल्म साथ साथ की ये गजल। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और धुन बनाई है कुलदीप सिंह ने।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर शंभू कव्वाल की आवाज में अमीर खुसरो की ये रचना।
1: शिकायत कभी न की लबों पे सा।
0: और ये आवाज है विशाल मिश्रा की। आप सुन रहे हैं इनका गाया ये गैर फिल्मी गीत।

0: उनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिव्या कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में ये पारंपरिक गीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में ये राजस्थानी मांड।

केसरिया बालम पधारू मारे देश, राजस्थान की जबान है ये। केसरिया महबूब से मुखातिब है।

सूरज से मिलन समाज होने के सूरज तुम्हें मैं पूजूंगी, भर मोतीरारो थाल, मोतियों का थाल भर के मैं पूजूंगी। इसलिए

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं की जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज अभिनेता राज बब्बर साहब का जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में, यानी यादों की महफिल कार्यक्रम में, हमने राज बब्बर की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है निकाह। आवाजें महेंद्र कपूर और सलमा आगा की। गीत को लिखा है हसन कमाल ने और धुन बनाई है रवि ने।

महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में अभी अपनी फिल्म निकाह का ये गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम याराना, गीत रचना रानी मलिक की और धुन अनु मलिक की है।

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज थी और फिल्म का नाम था याराना।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, युगल स्वर सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की, फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत। फिल्म का नाम है वारिस और गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

रविंद्र जैन का संगीत साहिर लुधियानवी के बोल हैं, आशा भोंसले और महेंद्र कपूर की आवाजी, फिल्म का नाम इंसाफ का तराजू।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: कपूर की आवाज फिल्म का नाम आज की आवाज। गीतकार हसन कमाल, संगीतकार हैं रवि।

0: प्रभात बात
1: बहुत
0: बड़ी तालियां उनके लिए
1: मजा आ गया कमाल कर दिया थैंक
2: यू। यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनिए निदा फाजली की रचना मनहर उदास की आवाज उषा खन्ना का संगीत और फिल्म का नाम आप तो ऐसे ना थे।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जुगल किशोर तिलक राज की संगीत निर्देशन में लीजिए हम आपको सुनवाते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के। ये फिल्म है भीगी पलकें।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों में।

सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं दोस्तों, आपके शहर में बारिश हुई या नहीं, या अभी भी आप धूप में बहुत परेशान हैं? बताइए आपके शहर में चिलचिलाती धूप है या फिर हल्की फुल्की बूंदे? लेकिन हमारे कार्यक्रम में आज हल्की फुल्की बारिश है और साथ में है प्यारी सी हमारी छतरी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में छतरी केवल धूप या बारिश से बचने का साधन नहीं होती है ना, बल्कि ये धैर्य, सुरक्षा और दूरदर्शिता का एक गहरा दार्शनिक प्रतीक होती है। क्यों, सही है ना? ये हमें सिखाती है कि तूफानों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचने की तैयारी जरूर की जा सकती है। जैसे छतरी बारिश में या चिलचिलाती धूप में खुद उस धूप को सहती है, बारिश को सहती है, तूफानों को सहती है, लेकिन हमें सुरक्षित रखती है। ठीक वैसे ही दोस्तों हमारे जीवन में आने वाले संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मबल भी एक ढाल की तरह काम करता है, यानी एक छतरी की तरह काम करता है। तो आज का ये सफर हम शुरू करते हैं इसी छतरी के नाम। तो सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं ना? अरे बताइए मेरे साथ हैं भी कि नहीं? देखिए ना, मुझे अकेले इस सुरीले सफर में निकलने से डर लगेगा, आप अगर मेरे साथ हैं तो ये सफर यूं ही आसान हो जाएगा जैसे हर बार होता है। तो बताइए, लिखिए फटाफट कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं, है ना? और हाँ, अपनी छतरी लेना मत भूलिएगा। हो सकता है कहीं बारिश हो, कहीं चिलचिलाती धूप हो, कहीं बहुत बुरी गर्मी हो, तो हम परेशान न हो जाएं और ये सफर सुरीला ही बना रहे। इसलिए आज का ये सुरीला सफर हम शुरू करते हैं। हाँ, हमारी आज की इबारत, हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमने इबारत नहीं लिखी, ऐसा नहीं है। आज जो हमने इबारत लिखी है वो ये है कि दशकों तक मुख्य धारा में हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया और इन गानों ने हमें छाता जरूर दिया, यानी हर फिल्मी गाने में ये छाता जरूर हमें मिला। और छतरी का ये उपयोग इसलिए किया गया कि फिल्मों में बारिश के दौरान नायक और नायिका एक छतरी के नीचे आकर उनके बीच का प्यार हमें दर्शाया जाता है, उनके बीच की केमिस्ट्री से हमको अवगत कराया जाता है, इसलिए इन छतरियों का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही डांस सीक्वेंस में रंग बिरंगी छतरियों का इस्तेमाल करके वो जो सेट है उसे आकर्षक बनाया जाता है। और बहुत से गीतों में बारिश होते समय छतरियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ गीत ऐसे हैं जहां बारिश नहीं थी लेकिन नायक और नायिका के बीच छतरी थी। तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं छतरियों के नाम, आपके नाम, इस गीत के साथ।

0: बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे, ये बारिश तेज है।
1: जी तो सुरीला सफर में तो हमने बारिश की शुरुआत कर दी है। आपके शहर में बारिश हुई या नहीं आप हमें बताने वाले हैं, और कितना मजा आता है ना इस गीत को। जब आपने देखा होगा तो पता चला होगा कि पूरे गाने में नायिका छतरी को खोलने नहीं देती है, और अंत में जब नायक छतरी खोलता है तो छतरी उड़ जाती है। छतरी उड़ गई, कितने मजे में वो कहते हैं उड़ जाने दे, है ना। तो हमारे श्रोताओं ने भी आज बहुत कुछ लिखा है छतरियों पर और इस रिमझिम बारिश पर। एक श्रोता लिखती है कि सदियों से रिमझिम गिरती बूंदें और हिंदी सिनेमा का रोमांस एक दूसरे के पूरक रहे हैं। दरअसल बारिश में भीगते हुए जब एक ही छाते के नीचे नायक और नायिका करीब आते हैं तो ये सिनेमा के सबसे खूबसूरत और यादगार दृश्यों में से एक बन जाता है। टिप टिप गिरती बूंदों की धुन और छतरी की ओट में पनपता ये भीगा हुआ प्यार दर्शकों के दिलों में आज भी एक मीठी सी हलचल पैदा कर देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर मानसून और मोहब्बत का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। जब जब रुपहले पर्दे पर बादल गरजे हैं तब तब प्रेम की नई परिभाषाएं लिखी गई हैं। इस भीगे हुए रोमानी माहौल को मुकम्मल बनाने में छतरी ने हमेशा एक बेहतरीन माध्यम का काम किया है। बारिश की बौछारों के बीच एक ही छतरी के नीचे सिमटे नायक नायिका के बीच की दूरियां पल भर में मिट जाती हैं। ये छोटी सी छतरी केवल पानी से बचाने का साधन नहीं बल्कि उनके दिलों को करीब लाने और सुलगते हुए जज्बातों को हवा देने का एक जादुई जरिया बन जाती है। पुराने दौर के श्वेत श्याम गानों से लेकर आज के रंगीन दौर तक छतरी के साये में पनपा ये रोमांस दर्शकों के दिलों को आज भी गुनगुनाता है।

पूरा कहा जाता है। बहुत सुंदर जानकारी, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात से छाती का और छाती से रोमांस का बड़ा घनीभूत रिश्ता है, खासकर हमारी हिंदी फिल्मों में। छाता प्रतीक है साथ चलने का, हिस्सेदारी का, देखभाल का, साथ ही सुरक्षा और छाया देने का भी। ये जीवन में प्रेम का प्रतीक भी है। एक छाता कैसे दो प्रेम करने वालों को नजदीक ला देता है, ये फिल्म श्री 420 के गाने में आप देख सकते हैं। पुराणों में कथा है कि परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की कड़ी तपस्या से पसीज कर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें जूते और छाता भेंट किए थे। तरह तरह के रंगीन छातों से लेकर काले छातों तक मन के पिटारे में छातों की बहुत सी यादें आज भी कैद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और छाती का रोमांस बेहद जादुई होता है, जहां तेज हवा के झोंके छाते को उड़ा ले जाते हैं और दो दिलों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। तेज हवा में जब छाता उल्टा होता है तो पल भर के लिए सारी दुनिया रुक जाती है। बारिश और छतरी का यह रिश्ता सिखाता है कि जब तक मौसम सुहाना है तब तक साथ खूबसूरत है, लेकिन जब तेज हवा जैसी मुश्किलें आती हैं तो साथ निभाने के लिए लचीला होना बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता टूट सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है आप लोगों ने। मैं हमारे सभी श्रोताओं की उनकी लेखनी की बहुत कायल हूं। तो चलिए अगला गीत उन्हीं जज्बातों को लेकर सुनते हैं जहां सुलगते हुए जज्बात हैं और नायक और नायिका एक ही छतरी के नीचे थोड़ा सा करीब हैं।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, हमारे यहाँ तो सूर्यदेव अधिक तेज दिख रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बारिश का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, पर आज छतरी वाले गीतों की फुहारों से मन को ठंडक जरूर मिलेगी। एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात में छतरी टोकनी आदि से बचते बचते वो साइकिल पर वो टोकनी तेज बरसात, दोस्तों के साथ घूमना एक अलग ही आनंद होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि पुणे में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं हुई बारिश और अभी कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि जून में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है हमारे शहर में। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में अभी तक ज्यादा बारिश नहीं हुई है। एक श्रोता ने लिखा है कि छतरी तो हर मौसम में काम आती है, चाहे गर्मी हो या बारिश, हसीनों को छतरी लेकर घूमने में ज्यादा मजा आता है, वो भी अलग तरह की। हमारे भोपाल में तो बारिश हो रही है और प्रकृति ने अपनी छटा बिखेर दी है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम चेरापूंजी गए थे इतनी तेज बारिश, खूब हवा में हमारी छतरी भी उड़ गई थी। और एक श्रोता का लिखना है कि एक तरफ सुरीला सफर शुरू हो गया और बारिश के गीतों से, तो दूसरी तरफ तेज बारिश की शुरुआत भी हो गई है, दोनों एक साथ हो गए हैं, क्या कहने, क्या बात है। जी तो हमने जानना चाहा था कि आपके शहर में इस वक्त बारिश हो रही है, या बारिश आसपास एक दो दिनों में हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, तो हमारे श्रोताओं ने हमें बताया है। और आप ये भी बताइए कि सुरीला सफर में आज आप हमारे साथ चल तो रहे हैं ना छतरी लेकर। तो अब आज के दो सवाल बिल्कुल सीधे साधे कि छतरी से जुड़ी कोई बातें। वैसे तो आपने छतरी को लेकर बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत इबारत पेश की है, लेकिन आपके जीवन में छतरी से जुड़े कुछ किस्से, छतरी उड़ गई जैसा कुछ लोगों ने लिखा, छतरी ऊपर की ओर मुड़ जाती है कई बार, आप भीग जाते हैं, छतरी खो जाती है कई बार, आप भूल जाते हैं और तेज झमाझम बारिश में आपको भीगना पड़ता है, या ऐसा कोई किस्सा कि तेज बारिश थी, आप छतरी को लेकर साथ थे, छतरी के साथ ही, और चाय की टपरी आई और आप अचानक रुक गए और चाय पीने लगे, ऐसे किस्से भी आपकी जिंदगी में होंगे बहुत सारे, तो उन किस्सों को हमारे साथ साझा कीजिए ना। और हाँ, आपने किन किन गानों में छतरी को देखा है बताइएगा, कहीं भी, जरूरी नहीं है कि वहां बारिश ही हो रही हो, लेकिन छतरी को दर्शाया गया है उन गानों में, चाहे थोड़ा सा कहीं एक कोने में आपने देखा होगा कि दूर बहुत सारी लड़कियां छतरियां लेती हुई जा रही हैं, इस तरह के भी दृश्य फिल्मों में दिखाए जाते हैं और आगे नायक नायिका अपनी बात कह रहे होते हैं। तो कोई भी गाना जो आपको याद हो, कम से कम शब्दों में हमें लिख भेजिए जहां छतरी का इस्तेमाल किया गया है, हम तो सुनाई नहीं। वैसे एक खुशी की बात यह है कि जैसे ही हमने आपको छतरी का क्लू दिया, आपने सभी गाने लिख दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, और हमारे एक श्रोता के गाने तो हमारे से बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं कि आपकी और हमारी पसंद, आपकी और हमारी प्लेलिस्ट मिलने लगी है थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर में, वही देखते हैं आगे मौसम कैसा है। गीता दत्त और मोहम्मद रफी साहब हैं काला बाजार में, शैलेंद्र की रचना है और सचिन देव बर्मन की धुन है।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस वर्ष बारिश कम होने के आसार हैं और यदि होगी भी तो जलते तवे रूपी धरती पर पानी के छींटों के समान होगी। वैसे भी इस वर्ष पहले के वर्षों की अपेक्षा कुछ बारिश कम होने की भविष्यवाणी भी की गई है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आशा रखिए, विश्वास रखिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप निराशा के बादल अपने आसपास मंडरा ले। आपको आशा रखनी है और निराशा बिल्कुल नहीं रखनी है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर हर साल नई छतरी खरीदनी पड़ती है, कहीं भी जाते हैं तो भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म श्री 420 का जो गीत आपने सुनवाया, इस फिल्म का राज कपूर और नरगिस जी का छाता लिए पोस्टर बहुत ही प्रचलित हुआ था और ये पोस्टर हमने अपनी दुकान में लगवा लिया था। क्या बात है।

एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर और नरगिस की वो आइकॉनिक छतरी प्यार हुआ इकरार हुआ वाले गीत की आज भी हर उस दिल की धड़कन है जो पहली बार मोहब्बत के दरिया में उतरता है। वो छतरी धूप छांव से बचाने का कवच नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से दूर अपना एक छोटा सा मुकम्मल संसार बसाने का जरिया बन जाती है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर के सभी श्रोता प्रेमियों को नमस्कार है और उत्तर भारत तो अभी तक तप रहा है, यद्यपि मानसून ने दस्तक दे दी है छिटपुट बारिश करके, और आज के गीत भी बारिश वाले ही होंगे, तो बरसात से भीगने से बचने के लिए छतरी जरूरी है। बिल्कुल, आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन आपकी कुछ गीत हमारे गीतों से, हमारी पसंद के गीतों से मिलते हैं। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश में नायक नायिका छतरी पकड़कर गाते हुए प्यार का इजहार करते हुए सुंदर दृश्य, ऐसे गीत आज सुरीला सफर में है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश रोमांस और छाती के संगम को दर्शाती आज की छोटी सुंदर सी इबारत है। फिल्मों में बारिश हमेशा से प्रेम और भावनाओं का खूबसूरत प्रतीक रही है। रिमझिम फुहारों के बीच फिल्माई दृश्यों में छाता केवल बारिश से बचने का साधन नहीं बल्कि दो दिलों को करीब लाने वाला एक प्यारा सा माध्यम बना है। और बारिश में छाती के साथ फिल्माए गए अनेकों रोमांटिक फिल्मी गाने हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ जैसा कि आपने बताया, और बहुत सारी गीतों का जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि नित नई प्रायोगिक प्रयास में प्रयासरत जोशी साहिबा अच्छा मैं की नई अन्वेषण छतरी वाला गीत संगीत हम श्रोताओं को एक नई ऊर्जा और दिशा दे रहा है। बारिश की फुहार हो या प्रेमी दिल शांत बैठे संभव नहीं, यहाँ उल्लेखनीय विषय होती है छतरी एक और प्रेमी युगल, और दोनों एक दूसरे को भीगने से रक्षा की दिखावे की कोशिश करते हैं परंतु दोनों के दिल से एक ही आवाज निकलती है, चलो इस प्रेम रस में सराबोर हो भीग लिया जाए। मौसम अनुकूल विषय वस्तु पर आधारित इस सफर में हम श्रोता भी संगीत रस में भीगने की तमन्ना रखते हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और भीगते हैं, छतरी रख लीजिएगा इस सफर में, ध्यान रखिएगा। हाँ, SD बर्मन का संगीत है इस बार, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम है बाजी। हाँ, ये गाना भी आपकी प्लेलिस्ट में शामिल था, है ना, शामिल है ना।

जी, टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप, कितना प्यारा गीत है ना। और हमारे मन का जो आंगन है उसमें भी बरसात हो जाती है इस तरह के गीत सुनने के बाद। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके शहर में बरसात हो रही है या नहीं, या आसपास हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, आप बताइए ना। अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपके शहर कौन सा है और कहाँ बारिश हो रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि खंडवा शहर में कल शाम को आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन शहर में कई जगह पेड़ गिर गए हैं। अच्छा, इतनी तेज बारिश हुई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे गांव कल रात बरसात के दूसरे नक्षत्र के पहले दिन रात भर बारिश हुई। इधर गोंदिया में बेटी के यहां 10-15 मिनट बारिश हुई और अब धूप है। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राजा महाराजाओं और संभ्रांत लोगों को धूप से बचाने के लिए कुछ विशेष रंग बिरंगी छतरियां लेकर लोग साथ चलते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहां तो अभी बारिश थोड़ी सी बूंदे आई हैं, देखते हैं हमारे शहर में कब कब भीगता है इस तेज बारिश में। बिल्कुल भीगेगा, थोड़ा सा उम्मीद रखिए और बताइए अपने शहर के बारे में कि आप कौन से शहर से लिख रहे हैं और वहाँ बारिश हुई कि नहीं। और छतरी से जुड़ी कुछ यादें आपको लिखनी है कि आपके जीवन में छतरी का क्या योगदान रहा है और कौन से गीत हैं वो जो आपको पसंद है उनके बारे में हमें बताइए, अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और प्रणय का मोहक रिश्ता सदियों से चला आया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत इस खंड काव्य में भी ये नाता दिखाई देता है। क्या बात है, हिंदी फिल्मों में भी बरसात और अनुराग भरा श्रृंगार हमेशा दिखाई देता है जो युवा दिलों को बेसुध बना देता है और आत्मिक आनंद देता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छाता और प्यार का नाता दिखाने वाले बहुत सारे गीत हैं। बिल्कुल, हमने आपके गीत पढ़े देखे हैं और बहुत सारे गीत हमारे गीतों से मिल रहे हैं, बधाइयां आपको बहुत बहुत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप ही हैं जो बिना इबारत के सुरीला सफर प्रस्तुत कर रही हैं जबकि बाकी लोग अभी भी इबारत का सहारा ले रहे हैं, जबकि बिना इबारत के कार्यक्रम का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। क्या आज छतरी वाले गाने ढूंढने में श्रोताओं की भागीदारी नहीं रहेगी बल्कि और भी बढ़ जाएगी और उनके और आपके बजाए हुए गीत ज्यादा मेल खाएंगे। आपको कुछ बातें कुछ गीत की वापसी कराने की बधाई। देखिए, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, आपने जो बात लिखी है पिछली बार भी आपने यही कुछ लिखा था, जो बात मैंने लिखी है चार लाइनों में वो इबारत ही है। इबारत का कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ये इसी तरह से सेट डिजाइन नहीं है कि इसी तरह का लिखा हुआ इबारत होता है। जो बात मैंने लिखी कि भई दशकों तक मुख्यधारा के हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया है, तो ये एक इबारत ही है जो मैंने अपने तरीके से लिखी ताकि श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा इबारत समझ आए और वो गीतों से जुड़े। तो ये कार्यक्रम सुरीला सफर ही है और हमारा उद्देश्य इस वक्त आपका मनोरंजन करना सुरीला सफर के माध्यम से है। तो आप इसी इबारत को पढ़िए और समझिए कि इबारत के कई रूप हो सकते हैं। एक ही तरह की सेट पैटर्न पर कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। हाँ, रही बात शब्दों की, तो मैंने आपको क्लू दे दिया कि हमने आज छतरी, मैं ये भी लिख सकती थी कि बे आज कुछ ऐसे गीत है जहां इस इबारत से आप समझिए, लेकिन मैंने आपकी बात को थोड़ा सा सरल बना दिया ताकि आप गीतों को अच्छे ढंग से ढूंढ पाएं और आपको भी खुशी हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बारिश हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती थी, अब बड़े हो गए हैं लेकिन अब इतना अच्छा नहीं लगता। अरे एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश, एक छतरी और रोमांस, ये तो अपने आप में ही एक मुकम्मल कविता है। सच में जब आसमान से रिमझिम फुहारें बरस रही हों और एक छोटी सी छतरी के नीचे दो लोग सिमट कर चल रहे हों तो उस पल का जादू कुछ अलग होता है। वो हल्की सी नजदीकी, एक ही छतरी में खुद को बारिश से बचाने की कोशिश दो अनजाने लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। इसी खूबसूरत मंजर को फिल्मों में रूमानी परिकल्पना के साथ परिभाषित किया जाता है जिसमें आज सुरीला सफर में हमें ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगला गीत सुनते हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, कमर जलालाबादी के बोल हैं, आवाज मुकेश की और फिल्म का नाम है छलिया।

जी एक श्रोता लिखते हैं कि भगवान महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली वैशाली बिहार में प्रचंड गर्मी है, दूर दूर तक काले काले बादलों का कोई अता पता नहीं है दीदी। चलिए तो सुरीले सफर के इस सफर में आ जाइए ना हमारे साथ, थोड़ा बहुत तो आपको आनंद आएगा ही इन बारिश इन फुहारों का, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब से विविध भारती उद्घोषकों ने, जिसमें आप भी हैं, बारिश के गाने सुनाने शुरू किए हैं, बादल मजबूर होकर मेरे शहर इंदौर में बरसने लगे हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जिले सागर मध्य प्रदेश की में इस रैली में इस सीजन की पहली बारिश परसों हुई थी, इस समय तो तेज धूप निकली है, चलिए बारिश की शुरुआत तो हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर अजमेर में अभी तेज धूप है, तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल शहर में रिमझिम बारिश हो रही है, पर हमने आज गीत तो एक भी नहीं लिखा, जबकि गीतों से प्यार तो हमें ज्यादा है, पता है क्यों नहीं लिखे गीत, क्योंकि आज हम आपकी पसंद के गीत सुनने वाले हैं, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे डूंगरपुर में भी बारिश बहुत कम हुई है, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बरखा रानी की प्रतीक्षा है, अभी भी लू चल रही है, बहुत सुंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके शहर में जल्द ही बारिश आए, लेकिन हाँ, अगर आप अभी गर्मी से परेशान हैं तो सुरीले सफर में निकल जाइए ना हमारे साथ, हम तो आपसे पूछ ही रहे हैं कि सुरीले सफर में आप हमारे साथ हैं कि नहीं, छतरी को साथ, छतरी भी होनी चाहिए। चलिए तो सुरीले सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बारिश के गानों से हम सभी बोर हो रहे हैं। फिर आपने लिखा है बहुत बढ़िया जी, बात समझ में नहीं आई कि जब बोर हो रहे हैं तो फिर बढ़िया क्या लगा आपको, और हमने तो कहा ही नहीं कि ये बारिश के गाने हैं, हमने तो आज उन गानों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है जिनमें छतरी का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कुछ गीत ऐसे भी हों इसमें जहाँ बारिश नहीं हो रही थी लेकिन छतरी थी। अभी अगला गीत आप सुनने वाले हैं उसमें कहीं आपको बारिश नजर नहीं आएगी, ना उन बोलों में गीतों के और ना कहीं उस परिदृश्य में, लेकिन हाँ जो गायिका या जो नायिका उस गीत को फिल्मा रही हैं, गा रही हैं, वहां पर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए तो आपके विचारों को हम क्या माने, आप बोर हो रहे हैं और बढ़िया क्या लग रहा है थोड़ा स्पष्ट लिखें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरी कविता की दो पंक्तियां बोल दीजिए आप प्लीज। क्या लिखा है आपने, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं। अच्छा, तो आप थोड़ी लंबी कविता लिखिए, वैसे तो आपने बहुत गहरी बात लिख दी है। अगर आप लिखते हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी कुछ पंक्तियां लिखिए ताकि हम उसको शामिल कर सके। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये वर्ष अलनीनो से प्रभावित है, ये एक मानसून से जुड़ा वैज्ञानिक शब्द है जो विश्वव्यापी वातावरण के संदर्भ में है। जब वातावरण इसके प्रभाव में रहता है तब उस वर्ष वर्षा बहुत कम होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारे एक श्रोता और भी आगे लिख रहे हैं इसी बात को कि ग्लोबल वार्मिंग के दंश को ये आशा और विश्वास ही तो झेलने की शक्ति प्रदान करता है। इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम इंसान भी तो हैं जिन्होंने प्रकृति का दोहन किया है, तो हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि आज समय पर बारिश क्यों नहीं हो रही है, या समय पर सर्दी क्यों नहीं आती है, समय पर गर्मी क्यों नहीं होती है। इसका कारण हम इंसान बहुत बड़ा एक कारण है जिन्होंने प्रकृति का नाजायज फायदा उठाया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजरात में मेरे शहर बड़ोदरा में बारिश को लेकर अभी तक मुंबई जैसा ही हाल है, मैं कल ही मुंबई आई हूं। अच्छा, एक श्रोता का लिखना है कि हमारे यहां सूरत में कल सुबह हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद लग रहा है कि लंबी छुट्टी पर चली गई, वो आए न आए सुरीले सफर में बरसाती गीतों की फुहारों में हम भीग रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बारिश आएगी आपके शहर में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अब तक कई छाते कहीं रखकर भूल आया हूं और वो कहीं मिले नहीं, इसलिए अब मैं कहीं भी छाता लेकर नहीं जाता। अरे तो बारिश आएगी, भीग जाएंगे, याद रखिए, अपनी याददाश्त को थोड़ा बनाए रखिए भाई। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम जब छोटे थे तब मेरे पापा हम सब भाई बहन के छाते पर ऑयल पेंट से अपने यानी हमारे नाम लिख देते थे ताकि स्कूल में उसे बदला ना जाए, तार के ज्वाइंट में ऑयलिंग तो खुद ही कर देते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर स्कूलों में जो अपनी मैट है, अपने छाते हैं या अपनी पानी की बोतल है, टिफिन है, भूल जाते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में अक्सर ऐसा होता था जब पापा जी ने हमें वर्षा ऋतु में विद्यालय पहुंचाने या विद्यालय से लेने आए थे और छाता खोलते ही वो उल्टा हो जाता था, तेज हवा में हवा की विपरीत दिशा में चलने के कारण हम भीगते थे और पापा जी भी हंसते थे। बिल्कुल यही जिंदगी है, और इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं और इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अचानक कुछ उल्टा हो जाता है, लेकिन उसमें भी हमें आनंद ढूंढ लेना चाहिए। अगला गीत ऐसा ही है जहां बारिश नहीं हो रही है और इन बोलों में भी बारिश नहीं है लेकिन छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का नाम है समाधि, लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत।

जी हमारे श्रोता लगातार अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी संगीत रस से भीगते हुए शानदार सफर कर रहे हैं। बिल्कुल यही हम चाहते थे कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं कि नहीं। हालांकि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इस सफर में मेरे साथ आए हैं कि नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर धार MP में हल्की फुहारों के साथ बारिश हो रही है और छतरी से याद आया कि पिछले वर्ष हमारी छतरी कोई ले गया था और आज ही नहीं लानी पड़ेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि छत्रपति संभाजी नगर से पुणे रेड बस ट्रेवल्स में ट्रेवल कर रहा था। पुणे आने पर मैंने केवल अपनी बैग उठाई और स्टॉप पर उतर गया। घर आने पर याद आया कि छतरी बस में ही भूल गया हूँ। भाई क्या बात है, ऐसे क्यों करते हैं, छतरी भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सोलापुर महाराष्ट्र से जैसे ही विविध भारती पर सुरीला सफर प्रोग्राम चालू हुआ तुरंत बरसात की बूंदें गिरने लगी। अच्छा, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो ही पूछा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है तो आसमान में बादलों ने दिवाकर को अपनी हिरासत में ले लिया आग बरसाने के जुर्म में। क्या बात है, जुर्म इतना बड़ा था सूर्य देवता का कि बादलों ने उन्हें अपनी ओट में ले ही लिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई। ये गाना देवानंद और आशा पारिक के साथ फिल्माया गया है। बारिश नहीं है गाने में लेकिन बहुत सारी सहेलियां रंग बिरंगी छतरियां लेकर गाती हैं। पार्श्व में कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत और मेरा पसंदीदा गाना है। तो चलिए आपका पसंदीदा गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म महल से। किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में आनंद बख्शी की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप आई हैं, रिमझिम बारिश हमारे यहाँ चल रही है। ये कल तो गजब की बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा तेज हवा, आंधी और बादल गरजे थे और बिजली भी खूब चमकी थी। इतनी तेज बरसात 2 घंटे हुई खंडवा शहर में और ठंडक हो गई, मजा आ गया, बहुत बहुत बधाई आपको। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो मई के मध्य से लेकर 22 जून तक तकरीबन 20 बार हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। अभी 20 जून को भी हमारे यहाँ 1.5 घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई, यानी राजस्थान हमीरगढ़ बात आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात है ना कि राजस्थान में बारिश हो रही है कहीं कहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में छतरी लेकर हम साथ चल रहे हैं, पर बारिश नहीं धूप से बचकर, क्योंकि हमारे यहाँ चटक धूप है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, छतरी लेकर तो हम साथ नहीं आए, हाँ संदेशों के साथ जरूर आए हैं, बातों और संदेशों के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले गर्मियां शुरू होते ही छतरी बनाने वाले मोहल्ले में छतरी की रिपेयरिंग के लिए आते थे, पर अब वो दिखाई नहीं देते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अगर अचानक छतरी नहीं हो और भीगने का मजा खूब आ जाता है। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि खूब पेड़ लगाइए, ये बारिश भी आएगी और धूप भी छाते की तरह सुरक्षा देगी, मतलब पेड़ आपको सुरक्षा देंगे, इसलिए खूब ज्यादा पेड़ लगाइए, ठंडी छाव मिलेगी। बहुत सुंदर। वहीं एक लास्ट में अंत में एक श्रोता लिखते हैं कि आपके साथ छाते में चलते चलते हर्ष उत्साह की छींटे झेलते झेलते सुरीला सफर कैसे संपन्न हुआ पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत अंतिम गीत के रूप में आपके साथ।

फिल्म चालबाज का गीत था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया हुआ, आनंद बख्शी की बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब सुरीला सफर, हम आखिरी मोड़ पर आ गए हैं पड़ाव का। ये अब जो है सफर यहाँ हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और आगे बढ़े। ठीक है, फिर चलेंगे एक सुरीले सफर की और कभी और दिन। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जुगनू पर। अपने अंदर एक जगमगाता सूरज लिए चलता है जुगनू। रात का सूरज है चांद, लेकिन चांद से बेहतर है जुगनू, क्योंकि जुगनू को चमकने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। चांद तो सूरज से किरणें उधार लेता है, फिर उन्हें चांदनी में ढालकर फूला नहीं समाता है। लेकिन जुगनू वो हमें सिखाता है कि अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास रखें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, और जीवन में जब भी निराशा या असफलता का अंधेरा घना होने लगे तो अपनी सकारात्मक सोच और कर्म के दीपक को जलाए रखना चाहिए।

अंधेरे की अपनी जिद है और जुगनुओं की अपनी जिद। सूरज बनने की जिद करो और जो ना बन सको सूरज, तो जुगनू बनकर छोटा सा सूरज अपने अंदर उगाकर अंधेरे से लड़कर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक बनो। जुगनू जब रात की काली चादर पर टिमटिमाना शुरू करते हैं, तो अक्सर अंधेरे में भटके को उम्मीद के सूरज तक पहुंचने का एक सिरा मिल जाता है और वो जुगनू अपनी रोशनी खोने तक उस भटकते प्राणी की उंगली पकड़ उसे सुबह की शफक रोशनी तक पहुंचा देते हैं।

हमारे सपने मन की मुट्ठी में रखे जुगनू ही तो हैं। माना जुगनू सूरज नहीं हो सकता और ना सूरज जुगनू हो सकता है, फिर भी सपनों के जुगनू हर सूरज की मुट्ठी में है। हर जुगनू अपने अंतस के सूरज से चमकता है, वो चमकता है फिर बुझता है और फिर चमकने लगता है। निरंतर ये क्रम जारी रहता है। जुगनू कभी सूरज की तरह तेज ना चमक पाने पर निराश होकर अपनी चमक नहीं खोता, वो तो बस अपने को पूरी तरह से स्वीकार कर अपने आसपास के अंधेरे से निरंतर लड़ाई जारी रखता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी, पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी

0: गुलदस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास कर।
1: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स .in, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई

0: इसे निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
3: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी

0: राधाकृष्णन ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: तो बता, छुपने वाले सामने आ।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म तुमसा नहीं देखा का गीत सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सती परीक्षा। गीतकार थे नजामी और धुन बनाई थी सम्मुख बाबू ने।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की। फिल्म का नाम साक्षी गोपाल।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म रानी रूपमती का गीत। बोल पंडित भरत व्यास के हैं और संगीत SN त्रिपाठी का है।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है पेइंग गेस्ट।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से हमने लिया है। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको रोशन के संगीत निर्देशन में फारूक केसर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है अजी बस शुक्रिया। गायिका हैं लता मंगेशकर।

0: सखी सहेली
1: हाँ, तो अब आज हमारे सामने बैठी हैं मंजरी जी। तो मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: आरती, तुम्हें और सुनने वाली सभी सखियों और सगा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ आरती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और देखो बहुत सारी बातें भी हैं। तो हमारी जो आज के विषय है वो पहले बता देते हैं आरती, की हल्की फुल्की बातें, घर में आंगन क्यों था जरूरी।
1: बिल्कुल, आज हम घर आंगन को लेकर आए
2: जी, और सखी सहेली के आंगन में लेकर आए, तो सब लोग हमारे साथी लोग सखिया लोग जुट गए हैं। तो अगला विषय क्या है आरती?
1: बिल्कुल, अगला विषय है हमारा सखी विशेष के अंतर्गत। हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को, जो कि सह संस्थापक हैं मैड स्ट्रीट डेन की जी। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की दुनिया में क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता है जी। वो है आग में घी डालना।
2: घी डालना, तो इस पर सब लोग अपने अपने विचार डालें और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में बताएं,
1: और इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमें, और साथ ही आंगन के विषय में बताएं उनका आंगन घर का कैसा था,
2: कैसा था,
1: कैसे खेलते थे वो अपने आंगन में।
2: और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशन, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी बड़े प्यारे से विषय है आरती लेकर आई हो तुम, तो हम लोग इन पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत
1: सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा गीत तुमने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। काली पलक पिया तोरी वाला
1: बिल्कुल, और
0: गीत।
1: चोरी ना हो और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो
0: जी जी
1: अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं।
0: हाँ
1: वो
0: बताइए।
1: लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशन।

0: ऑप्शंस कौन सी हैं जिनके जरिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं।
1: तो बताइए,
0: तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ ज़रूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं, जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीज़ें उपयोग करते ही हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है जिसकी वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है।
1: बिल्कुल आरती, और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है जहां हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही जीवन जो कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है जहां वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं, और मेडिसेफ जो की एक बेहतरीन दवा रिमाइंडर ऐप है।
0: बिल्कुल, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं अक्सर समय पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आपको इस समय दवा देने का टाइम हो गया है। और वेल्दी और या फिर माय फिटनेस, वेल्दी यानी कि आपकी वेलबींग या आप किस तरह से स्वस्थ हैं, वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माय स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहां बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ ही SCW.DOSJE.GOV.IN जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है, कई बुजुर्गों को पढ़ने में आंखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती है तो उनके लिए ऑडियो बुक सबसे उत्तम है। यहाँ हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
0: जी बिल्कुल, और एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567 यानी 14567, और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशन भोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
1: बिल्कुल, और पेंशन भोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक डेडिकेटेड SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो ये चीज बहुत अच्छी है आरती।
0: बिल्कुल, अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी चीजों को, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं जिनके लिए

0: खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
1: बिल्कुल, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना भी चाहिए, जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है, तो उसके उसके लिए हम अगर कोई घर में उस समय नहीं है तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के ज़रिए या फिर किसी ऐप के ज़रिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं, आरती, नागरिकों को या फिर से ऐसे सीनियर सिटीजन्स को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है, साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास ना हो सके।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है इस चीज़ के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, और या इस तरीके की अब फ़ोन भी चल गए हैं जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजिल, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ सुमन जी, इतना अच्छा प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं?
1: देखो आरती, ये बताओ ना कि तुमने कभी आग में घी डालने का काम किया है क्या?
0: मैंने कभी नहीं किया है आग में घी डालने का काम। हाँ, उस घी को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है।
1: ये तो बहुत अच्छा तुमने काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है आरती। नहीं मालूम पड़ा हम
0: ये ना हो,
1: खुद ही फंस गए उस चक्कर में।
0: ये ना हो कि बात पहले झगड़े हो रही थी, आपस में बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था और हमारे जाने के बाद वो लात घूसे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: और देखो एक साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा, पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है।
0: जी,
1: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। एक लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है। अंग्रेजी में इसे एड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, न कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
1: और आरती, कभी कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई और उसको सुनकर के तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है, और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का।
0: बिल्कुल, पड़ोसी हो चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है।
1: और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद हैं वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता नहीं कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, वो बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम कर रहे हो, है ना?
0: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए, जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
2: अगर नजरों से नजर शर्माते हो क्यों, जुम्मन कहा
3: दुनिया का है डर, नजरों से नजर टकराते हो क्यों, जुम्मन कहा
2: मिलती है अगर नजरों

0: delle.
1: संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है अश्विनी अशोक तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
2: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
1: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
2: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देशभर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
1: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
2: बिल्कुल, उन्होंने वहां पर मोबाइल

0: मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि एआई को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
1: जी, और अश्विनी कहती हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं, मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ, मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
0: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी एआई तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक भी हैं।
1: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लॉ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सके।
0: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया एआई के लिए, जहां पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
1: जी,

0: तुमसे, देखो भाई हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया, तो आज हम लोग इसी पर तो बातें करने
1: बिल्कुल
0: वाली है
1: आंगन
0: कि
1: की ही बातें करनी है हमको।
0: जी देखो पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पे सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोरना गेहूं चकिया धरना ये सारे जो
1: सब
0: काम
1: कुछ।
0: होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीजें डाली जाती थी, और उसके लिए पूरा घर जुट जाता था।
1: बिल्कुल
0: यानी
1: हर मौसम समझ लीजिए
0: जी
1: हमारे आंगन में उतरता था।
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्योहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो
1: सब
0: पंगत में
1: आंगन
0: जो खाना खाया
1: बिल्कुल।
0: जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी, उसके उस पर बैठकर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग
1: बिल्कुल।
0: मजा है। और
1: और जी
0: गर्मियों के दिन में, हाँ तुम क्या कहने
1: हाँ
0: वाली
1: मैं ही कह रही
0: थी?
1: थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो जो असली मजा होता था ना वो आंगन में आता था, क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप छप छप
0: क्या
1: छप,
0: बात
1: इतना
0: है।
1: मजे आते थे कि
0: और तुम्हें
1: मतलब।
0: याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था,
1: जी
0: और जब निकासी की जो जगह होती ना उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे
1: बिल्कुल।
0: कि पानी भर
1: ये
0: जाए।
1: मुझे मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी,
0: सभी की
1: सभी
0: है
1: के घर आंगन, जिनके जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहाँ पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीज़ें भी करना, वहाँ पे इंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज़ का
0: बिल्कुल।
1: वो भी करते थे।
0: और देखो ना हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे। आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वही नहाते धोते, नहाना धोना कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था।
1: बिल्कुल।
0: और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर
1: बिल्कुल।
0: के करते थे, तो बहुत मजा आता था
1: और
0: उनकी
1: रात
0: यादों
1: में
0: में।
1: जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते अपनी यादें जब करते हैं साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयां बिछा लेते थे, तो बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन से।
0: बिल्कुल। और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं वो डुला करके एक दूसरे को करते थे
1: बिल्कुल
0: हवा, वो भी बहुत यादगार है। और
1: बिल्कुल
0: हमारे साथी क्या लिखते
1: बिल्कुल।
0: हैं
1: हमारे एक
0: बताओ।
1: साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो, समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था, और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
0: क्या बात है। और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहां बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहां माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहां बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहां सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी। मतलब सोच लो कितना
1: बिल्कुल।
0: सुंदर था वो समय, और आज भी जिनके आंगन वो ही इसका मजा लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी, इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यही से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूं कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही, और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ, हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने, और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है, बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जो ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारी औरतें मिलकर ये गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपने सुख दुख की बातें कहती थी, यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे, ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे, और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसा के चौबारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे, याद होगा तुम्हें, ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी वहीं रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था, हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता लेती थी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है, उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं, आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई हैं। और आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो, एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे, इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा, प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था, साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है, वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहां धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।
0: और देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी, सुख दुख की बातें यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पे बनता था, किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था, और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितनी किया करते थे, शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों के, समझ लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
0: और वो याद है जब चावल बिनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ, चूचू करता हुआ देख रहे हैं, तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे, तो उनको दाना डालने में बहुत मजा आता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहां सुबह शाम दिया जलाया जाता था, और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे, और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे, और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे, आई स्पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे। तो उसका भी एक अपना मजा है जो आज भी
1: और हर मौसम का, हर मौसम का, चाहे गर्मी हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना, वो जो सूरज की रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका ये होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
0: और जहाँ जहाँ धूप जा रही है ना, वहाँ वहाँ पे कुर्सियां भी जा रही है, चारपाई भी जा रही है, और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ कर आंगन में। ये बहुत अच्छा टाइम पास था कि उसके साथ जो नमक की पुड़िया याद है ना, यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गया सीजन में तो वो भी काट के, सब मतलब खान पान से लेकर
1: जो भी चीजें आपको जो भी काम करना है ना, सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज का।
0: आनंद उठाते हैं गीत,
1: बिल्कुल, एक गीत का आनंद उठाते हैं।

0: तो भाई देखो, हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में
1: बिल्कुल
0: गुजार लिया,
1: इस
0: फूलों को
1: आंगन में
0: भी।
1: हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी।
0: अब हमें चलना चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो
0: सभी को मंजरी
1: और
0: वर्मा और
1: आतिश श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल
1: 15 इंतजारी है तेरी।
0: फिल्म मुल्क,
2: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़,
1: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर लमसा है।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
1: ए बेखबर
3: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
4: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
3: जी,
4: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए

0: शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं,
1: जी
0: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है, तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
1: ओहो
0: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसे हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली, और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, मामानी ने। तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और दधियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेती बाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई, ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई।
1: जी
0: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना,
1: जी
0: ये सब जो एहसास थे, ये सब जमा होते गए, और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ।
1: जी जी
0: ये 1984 का ज़माना था।
1: कितने बड़े थे आप?
0: मैं 71 में पैदा हुआ।
1: ओ, तब तो बहुत छोटे
0: हाँ
1: थे।
0: हाँ छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस ज़माने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था। 1984 लास्ट या 85 शुरू का ज़माना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे। तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
1: काम क्या कर रहे थे? अच्छा
0: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस ज़माने में, जो पान में सुपारी खाई
1: जी
0: जाती
1: जी
0: है,
1: जी
0: वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज़्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
1: जी
0: थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ, तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था,
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ, और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में,
1: जी जी जी
0: या उसको समझने में, या
1: जी
0: उसके महसूस करने में। तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब
1: रेडियो
0: बस
1: का स्विच ऑन कर
0: हाँ
1: दिया।
0: कर दिया ऑन, और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे काटा था, मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गज़ल
1: बज रही
0: बज
1: थी।
0: रही थी, और वो गज़ल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं,
1: क्या बात है।
0: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नज़ाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गज़ल कोई गा रहा था, और इस गज़ल के साथ साथ मेरी गज़ल शुरू हो गई, और सेम मीटर में, है ना। अब वो गज़ल तो मैंने ज़ाये कर दी, मुझे याद नहीं है उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मकता कहते हैं।
1: शुरू हो गई, मतलब आप कहने लगे।
0: मैं हाँ,
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने
0: मेरे
1: लगे।
0: अंदर का शायर जो है
1: जी जी
0: मुतहर्रिक हो गया,
1: जी
0: एक्टिव हो गया उसी गज़ल के साथ।
1: और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो। विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था,
0: अच्छा
1: तो वहां पर गजलों का प्रोग्राम
0: हाँ,
1: हुआ
0: तो वो
1: करता
0: हाँ
1: था।
0: तो वो गज़ल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गज़ल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गज़ल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गज़ल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गज़लें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी
1: जी
0: उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस
1: जी
0: तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, ख़त्म नहीं होती।

0: वो एक जुनून होता है जो चलता रहता है। तो
1: वो गजल याद है?
0: गजल तो याद नहीं है क्योंकि मैंने वो जाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना।
1: क्या बात है।
0: अच्छा मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की, तो
0: बिल्कुल
1: मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से लिया आपने शायरी की।
0: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात है।
0: जी हाँ
1: शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फहरिस्त है
0: जी
1: गानों
0: हाँ
1: की,
0: जी हाँ जी
1: उसकी
0: हाँ
1: चर्चा भी हम आगे करेंगे।
0: हाँ वो सुना दें आप। मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है,
1: क्या बात है,
0: गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह। तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए,
0: जी
1: बुनियादी दर्द।
0: हम
1: ऐसा नहीं कि आप ज़ख्मी हो गए और वो ज़ख्म का एक दर्द है, वो भर जाता है, वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है ज़ख्म भरते ही।
0: जी
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है,
0: हम

0: एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
1: बिल्कुल
0: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और मामानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता
1: बिल्कुल सही बात,
0: जितना अधिकार आपका आपके बाप
1: बात से
0: के।
1: मिलता है
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: तो जब आप सेंसिटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहाँ पले। लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसिटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसिटिव मैं शुरू से था, तो ये प्रोसेस
1: चल रही थी
0: था।
1: बचपन में।
0: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था।
1: जी
0: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का,
1: जी
0: जिसमें सारे दुख जमा हो रहे
1: जमा
0: थे,
1: हो रहे
0: और
1: थे, क्या
0: एक दिन
1: बात
0: वो
1: है।
0: फट गया
1: ओहो
0: और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ।
1: जी
0: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा,
1: जी
0: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं लड़की।
1: जी जी जी
0: ठीक है, तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो
1: जी
0: इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ,
1: जी
0: जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का,
1: जी
0: उसके बगैर मुमकिन नहीं है,
1: उस
0: क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीज़ों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
1: महसूस करते, वो जो
0: महसूस करते
1: खरोचे
0: हैं।
1: होती है वो खरोच आपको
0: हाँ
1: कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो
0: जी
1: आपको सुकून मिलता है। तो
0: जी
1: हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
1: क्या बात है।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर।
1: क्या बात है।
0: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
1: वाह
0: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे,
1: वाह वाह वाह,
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है,
1: जी
0: हम
1: जी
0: उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में,
1: हाँ
0: गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको, नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को।
1: जी
0: वही दर्द आपको बड़ा कलाकार, बड़ा फनकार बनाता है।
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई
0: तो
1: बार।
0: दर्द हीरा है दर्द मोती है,
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं, नानी की जो बातें हैं आपने जिक्र किया, नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियाँ, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
0: नानी की मोहब्बत है
1: बताइए,
0: याद
1: कोई
0: है।
1: किस्सा बताइए नानी
0: मैं
1: का।
0: आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
1: क्या बात है। ओह
0: हाँ, बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है, माँ के साथ एकाध वाकया जरूर याद है लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस
1: ओह
0: जमाने में टीबी लाइलाज था,
1: जी जी
0: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो

0: नानी ने बहुत प्यार किया और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाक़े हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी
1: क्या बात है बहुत
0: और
1: बढ़िया
0: वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी
1: जी
0: बहुत।
1: जी
0: और मैं पढ़ने में तेज़ था शुरू से,
1: हाँ
0: एक आध दो सब्जेक्ट में कमज़ोर भी था, जैसे मैं गणित में कमज़ोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है, दीनियात कहते हैं, वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमज़ोर था। बाकी सब में, राइटिंग वगैरह में, आलेख में
1: तेज से।
0: बहुत तेज था मैं। हाँ
1: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहां पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
0: हाँ, सूरत में
1: जी,
0: जी
1: सूरत में।
0: जी
1: तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
0: वो शायरों में तब मैं आया नहीं था, और मैं सूरत में ही रहता था,
1: जी
0: और गुजरात उर्दू अकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था वो, बहुत ही बड़ा मुशायरा था। और ये बात है 1994 की,
1: जी
0: है ना।
1: शीनकाफ निजाम भी आए
0: हाँ
1: थे
0: हाँ
1: उसमें।
0: शीनकाफ निज़ाम साहब ने उसकी निज़ामत की थी, उसका संचालन किया था।
1: जी
0: अच्छा, आपको इतना डिटेल में
1: बिल्कुल, कुंडली आपकी पता है लेकिन अभी श्रोताओं तक पहुंचाना है सारी
0: तो
1: बातें
0: उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली,
1: जी
0: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी, और शीनकाफ निज़ाम, और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
1: जी
0: सब।
1: जी
0: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
1: जी
0: मुल्क
1: जी
0: में।
1: जी
0: संदेशे आते
1: हिट
0: हैं, है
1: गाने
0: ना,
1: होते रहे थे
0: आए
1: बिल्कुल।
0: जाते हुए लम्हों, वो गाने, मतलब ये वही जमाना था।
1: हाँ
0: और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे, और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो, प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं।
1: जी जी जी
0: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था, और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है,
1: जी
0: बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं
1: हाँ
0: दूसरे शहरों
1: उनको
0: से आए
1: बाद में
0: हैं
1: रख।
0: और जो नामचीन हैं, बड़े शायर हैं, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा ख़त्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीनकाफ निज़ाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी
1: जी
0: थे,
1: जी जी
0: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया, और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामईन जो है, वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था, और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और ये जो बाहर से सब शायर आए
1: जी
0: थे
1: जी
0: इनकी देखभाल में भी हम
1: जी
0: थे,
1: हाँ
0: जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
1: और उसमें खुद को
0: जावेद।
1: प्रूफ करने का जब समय
0: हाँ
1: था।
0: हाँ
1: जी
0: जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात
1: जी
0: थी। शीनकाफ निज़ाम साहब से शायद पहले मिला होगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में

0: ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, चूंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था, मैं तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवान ही नावेल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावेल लिखा है जो दो जिल्दों में, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी, दीवारों के बीच, वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ,
1: क्या बात है,
0: है ना
1: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा।
0: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
1: जी।
0: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था,
1: बिल्कुल,
0: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था
1: जी,
0: उनको।
1: जी।
0: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने, तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: ओहो, क्या बात है,
0: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी
0: है, अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती है
0: तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है,
1: जी, जी।
0: है ना। और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी है, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो, तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी, हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतलब सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए,
1: क्या बात है,
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह।
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नजर कर दिया, है ना, हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते, नजर
0: करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैंने जुर्रत कर ली
1: जी, जी।
0: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं,
1: क्या बात है,
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह।
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया उसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया
1: जी, जी।
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जा दे दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
1: यादगार रहा,
0: यादगार और पहला बड़ा मुशायरा था।
1: जी जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई

0: छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा, ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था। और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला, और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं।
1: हाँ जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया है।
0: इरशाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात है।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतूत का जमाना तो नहीं रहा लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
0: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
1: जी,
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने
1: जी। तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाए?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: तो ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब, और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे। विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा,
0: तो आप बताइए, अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी।
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो,
0: जी
1: तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी कभी।
0: अच्छा, ये
1: हाँ,
0: बात तो नहीं पता
1: कभी
0: थी।
1: कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते
0: क्या बात
1: हैं।
0: है, बहुत बढ़िया
1: तो हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो
0: जी,
1: किताब पढ़ते हैं,
0: बहुत पढ़ते
1: नावेल और
0: हैं
1: कहानियाँ
0: जी।
1: बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था,
0: जी
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती
0: जी
1: हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है,
0: हाँ
1: बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी
0: थप्पड़
1: 80 तक,
0: और भीड़ भी,
1: भीड़ और 80 तक आया है,
0: आर्टिकल 15
1: आर्टिकल
0: बिल्कुल अलग है।
1: फिफ्टीन, थप्पड़, अनेक, ये सारी सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है, या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थीं
0: जी
1: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थीं, और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खास तौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे अनुभव सिन्हा साहब, वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था,
0: जी,
1: तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो
0: और
1: वो
0: सुंदर फिल्मांकन किया
1: हाँ,
0: उन्होंने।
1: बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए हैं फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी।

0: उनकी थुम्बिन, वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
1: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
0: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले
1: पहले
0: जो
1: वाले
0: पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
1: देर आए दुरुस्त आए।
0: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस, और वो खुद बनारस के रहने
1: जी,
0: वाले
1: जी,
0: हैं।
1: जी।
0: तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं, और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं, सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटकटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहाँ जाता हूँ अकेला, और उसको फील करता हूँ मैं, सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
1: जी
0: है,
1: जी
0: बड़ा
1: जी
0: खूबसूरत सा
1: जी
0: नाम भी है
1: उनके
0: बनारस।
1: नंबर पर वही लिखा हुआ
0: हाँ
1: था,
0: हाँ
1: उनके
0: हाँ
1: व्हाट्सएप नंबर
0: हाँ
1: पर।
0: तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ तीन चार फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी, और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी,
1: जी जी
0: है
1: जी
0: ना, और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद,
1: जी
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे।
1: उसमें आपने गाना लिखा है
0: हाँ,
1: जिद।
0: वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, वो रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले दो तीन गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया, वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया, और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे, और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार फिर बताइए।
0: जिद,
1: जिद फिल्म।
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया,
1: जी जी
0: तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज़े इश्क हूँ मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ हैं रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू, है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये
1: जी
0: जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने,
1: जी
0: ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद, जो जगजीत सिंह जी ने
1: जी
0: गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ, तेरी फरियाद हो गया, है ना, तो ये पिक्चर भी नहीं चली।
1: जी
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूँ तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूँ तुझ में।
1: जी क्या बात
0: तो
1: है।
0: ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया, पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूं बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वैसे, और पूरे देश में मिलती है,
1: जी
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी, तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र
0: हाँ
1: किया
0: हाँ
1: आपने,
0: हाँ
1: वहां
0: हाँ
1: पर जगजीत सिंह साहब ने एक
0: जी
1: गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब और साथ में रेखा भारद्वाज की
0: जी
1: आवाज
0: हाँ
1: थी,
0: जी हाँ
1: तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में, गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं
0: जी
1: है।
0: हाँ, मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी,
1: और रेखा भारद्वाज भी थी उसमें
0: हाँ,
1: उस गाने
0: लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल
1: में।
0: सिंगर वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं, नहीं मतला वही रहेगा, तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए, फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात
0: हाँ,
1: है।
0: तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई, पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बज़ाहिर मर गया है
1: जी
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है, इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बज़ाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहाँ इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
1: क्या बात है। अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे। वाह
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे,
1: वाह वाह,
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से
1: हाँ
0: के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी जी,
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी,
0: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में है, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही ना हुई।
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

आकाशवाणी बदरवा स्टेशन से समीन आप सुन रहे हैं बदरवाही मौसिकी प्रोग्राम में। आगे आइए सुनते हैं पल्लवी मन्हास की आवाज में लोकगीत।

0: मतलब तन के जगह रहने खाने रो पीने रो जब बहुते आसम कुंदन तन तभी ध्यान रखना जरूरी है। तो ऐसे मतलब कोई भी काम के नू तो तले ले ऐसे डिपार्टमेंट से भी राब तो रखना ही कई स्कीम बचन तन स्कीम और भी फायदा लोड तो साल रो और अपनी जब जमींदारी है आसन कुंदन तन जमीन खुली डुली तो अस अपने काफी मतलब कारोबार केरी सकते मतलब जमीनी से जुड़ रहे तो अस मतलब बेचिया अगर रखते कुंदन दूध और कारोबार के साथ तो आसन जमीन से ताली फसल ले रही है आसन घास अपने उटार करो अपनी जमीन में निशी गाते बेची पेली गए चन बेची कर जाए गोबरे तो तक उन तो निशी जमीनी जे काम है ते मतलब एंसर कुने कि आख आस सर्कले एरो बेनी गाते कि हर काम जने ता सारा में सी मतलब केरी सकते हम और गारे सारे फैमिली में जेदर भी आंता आस मिलजुलता नेचर काम केरी सकते हम और आप इन जाए आज कुने कि आस ये बोलो कि मतलब आखता रोजगार मिलना मुश्किल बहुत है तो अस कुंदोतन अपनी जिम्मेदारी में भी कुंदोतन काफी अगर थोड़ी मेहनत तो के नहीं पेचे मेहनत कह रहा हूँ और थोड़ी जरूरी जानकारी रखूँ डिपार्टमेंट से भी रबत रखूँ स्कीम भी जाने चंतल और फायदा सालों तो अस जरूर कामयाब है सकता हूँ और अपनी जाए तो सही आख आमदनी बोचे तभी अस कमी सकता हूँ ऐसे जिम्मेदारी करा
1: जी मुमताजा जी ठीक जो तुसें भाई यार जमीन आसन कान ते जमीन अस खिली भी लगे रखने
0: जी
1: दुई
0: बिल्कुल
1: गल है कि भाई दसन गज तैलों जरूर आ रहे या छेले ते अस मास कोई घर या कोई दुकान या कोई किछ मकान वगैरह बनाने शुरू करता हूँ। आसन का जमीन जो है दिन ब दिन जो है घटी रह रही है
0: जी
1: ठीक
0: बिल्कुल
1: है। ते साथ साथ ही कुने कि भाई उन्हें अस जंगलों और नुकसान करता जमीना ना बनाई सकता हूँ असं कहना थोड़ी चीज़ है जमीन है ऐसी बचानी है
0: जी
1: ठीक है।
0: जी
1: असम ज़्यादा कर ज़्यादा असं उपज हासिल करनी है और खास गल असं सुनने जी मैं अपने किसान कर नहीं अस तो हाइब्रिड बीज असं लोड़ तो लेकिन फिर भी असं इसमें फ़ायदों ना बो लेकिन खाली हाइब्रिड बीज लाने से असं फ़ायदों नहीं पुजनो तो सीरी टाइम टाइम ही असं नींद गुजर तुम्हें पहले गल की साथ
0: जी जी
1: साथ ही जमीन भी तेस काबिल लोड़ चाहिए कि तेन बीज तेस में पनपे छेल तरीके से उगे।
0: जी जी
1: दुयो गल क्यों नज़र आ रहा असें गल करनी कुकड़ी इशा किसान ला नहीं दी रहा और आकार कई दुआर दे रहा और तस्मा कोने की दूरी बहुत ज़रूरी है
0: जी जी
1: यानी डाले का डाल जो कुकड़ो डाले कम से कम यूँ जो था कि भाई 2 फुट डाले का डाल रहा है तो बड़ी छेल है
0: जी
1: ठीक
0: जी
1: है। तस्सी को बोते कि आखता इशूज रखना कुछ के बात बोड़ी चलचे तो डाल टूटन
0: जी
1: डुलन
0: जी
1: और दुयो कोने की डाल मजबूत बनते हैं
0: बिल्कुल
1: कई ठहरा सहरतम कि भाई बिल्कुल ही जमीनी में घनचिप बोते कुकड़ी ऐसी ल्योरीन तैना फिर कुम बोचेंगे बिल्कुल पितली पितली जरे
0: जी
1: डाल
0: जी
1: बनता ना और तैन जड़ भी तितली मजबूत ना बोए और जे थोड़े जरे लोफ वजने से कुकड़ी शी बिछड़ी गए चन
0: बिछड़ी गए
1: तस्मा
0: जी
1: असी कुने के राजमा भी लो रहे बोतन ते सांतर में असी मौठे लो रहे कहीं स्यूल भी लातन तैन फिर सारू अक बेगा ते और तैन छड़नों शुरू बेगा ते
0: जी
1: ठीक है। लिहाजा एन चीज़ अगर असी ध्यान रखनू है कि जतरू संकु आसन कोई भी अनाज असी अगर बोर हुए कुकड़ी ल्योरीन राजमा लो रहे या फिर अस स्यूल बेतम ठीक है सिउल लानी शेख सार लाई तकरीबन 19 सदी साढ़ी मोटे
0: जी
1: लाठी
0: जी
1: तन भी गटे साढ़े तो जोरों मतलब है कि ऐसी दूरी बनी तरह रखनी पौधे कर पौधरी ठीक है। तो सर बाद सब्जी की गल अगर अस करते हम तो सिबजन में भी तय है गल है क्यों नज़र तुम्हें गल जो है कि यार मौसम अनुकूल है क्यों नज़र बीमारी भी इशे बागन में इशे शाड़ शुकाड़न में इशी फसली लगी सकती है ठीक है।
0: बिल्कुल
1: तो सिबजन में भी खास अस गल करम कि जन जल्दी कीड़ों लगते तो सब बनकर पहले टमाटर
0: बिल्कुल
1: बाठे
0: जी जी
1: है ना यार दूई सब्जी असन के इनका अगर इनके टाइम ही असं हेयर गेस ना की तैन जल्दी समझो तुम कीड़ों लगनो शुरू भी गाते। दुयो गल है कि टमाटर के लिए असं बाड़ार बनानी
0: जी
1: ठीक
0: जी
1: है ना तो अगर तैन तले में भी डाल बेजे तो तस्मा बीमारी लग जाए। साथ
0: जी
1: साथ ही बहुत सारी फसलें इशे एड़ी किसान जन ले रहा और जना मेहनत करता जनी पाली ओस वगैरह बनो रहे तैन शेल फायदों कमी रहा
0: जी
1: तैना
0: जी
1: करीब दोल दो ना मार्केटी मौसम सब्जी है नहीं जी मल्चे टाइम ही
0: जी जी
1: दुयो गल के इशे उन्नत किसान एयर इनके जनी अस अजकाल रे विदाउट पाली हाउस से है अपनी जना सब्जी ले रही तो तेने भी ध्यान रखनू है कि कोई ची भी किसी कोई बीमारी है ता तै फौरी तौर पर सुनो ट्रीटमेंट की ओर लोड़े
0: जी
1: असें
0: जी
1: अस तैने जो तुम कि अपनी जमीनरी से जाँच करवात साथ साथ ही बीज ट्रीटर लाता बीमारी करो रोकथाम बेगा चे थोड़ी
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: लेकिन अगर तसेरे बावजूद भी असन अगर कोई वातावरण की वजह से कोई वायरल कोई डिजीज इशे फसली में जीगा चे है ना तो तैसरों से फौरी तौर
0: जी
1: नतीजों या कोई तस छिड़काव की ओर लोड़े सपरे और ताकि तस्कर असम बचाओ भी गए।
0: बिल्कुल
1: दियों गल है अभी जो ले कि भाई बागड़ में भी खास ध्यान देनू है वो नज़रे तस्मा भी

0: आज हमारे साथ प्रोग्राम किसान वाणी में बात कर रहे एक प्रोग्रेसिव फार्मर जो दहरा बदरवा के रहने वाले हैं, हंसराज जी। हंसराज जी, आपका प्रोग्राम किसान वाणी में खैर मकदम है।
1: जी सर, सभी अफसरों को मैं नमस्कार करता हूं और मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के बाद भी ऐसा प्रोग्राम जो है तो चलना चाहिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये गांव-गांव में जाकर हमारी बहुत ही हेल्प कर रहे हैं।
0: हंसराज जी, जिस तरह से आपने प्रोग्राम की बात की, आज यहां पे कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड

0: नल जी जम्मू की तरफ से ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, इसका क्या मकसद है और आप और दूसरे किसान भाई इससे क्या फायदा उठा सकते हैं?
1: सर जी, इससे हर किसान भाई फायदा उठाते हैं, ऑफिसर लोग आते हैं, ये हर किसान को डायरेक्शन देते हैं कि जो भी बीज कैसे, बीज की ब्रीड क्या होती है, कैसे बीज किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में ये क्या नाम ऐसा है कि किस किस टाइम पर ये इनसे हमें बहुत राजमाश का बीज ये देते हैं, हैं हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बहुत ही फायदा होता है, हम इन अफसरों पर बहुत ही खुश हैं। लेकिन इसमें हमारी ये भी ताकीद है कि हमारी ये भी ताकीद है कि मोदी साहब जी तक ये बात होनी चाहिए कि जो फार्मर है, किसान जो है, तो उसको जो 50,000 से नीचे जिसका लोन है वो माफ़ होना चाहिए।
0: सर, जिस तरह से आपने लोन की बात की, सर हमारे वज़ीर आज़म का एक सपना है कि किसान खुद कफील हो, किसान की जो आमदन हो वो दुगनी हो, इसके मुताबिक आप क्या, आपको लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पालन ये आप तक पहुंच रहा है?
1: इसमें बहुत सी स्कीमें दे रहे हैं एग्रीकल्चर वालों की तरफ से, हमें बहुत स्कीमें मिल रही हैं, जैसे शिप हस्बेंड्री की स्कीम दे रहे हैं, ये क्या नाम एनिमल हस्बेंड्री में से बहुत सी स्कीमें दे रहे हैं, वो सबको इस चीज़ का फायदा हो रहा है।
0: जिस तरह से हंसराज जी आपने शुरू में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात की, जब आप एक कामयाब फार्मर, ये किसान, ये प्रोग्रेसिव फार्मर बने, तो क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने आपको कितना गाइड किया?
1: इन्होंने बहुत बहुत सारा गाइड किया है, और ये हमें वक्फन ये हमें गाइड करते रहते हैं, कहीं कोई हमें समस्या होती है तो हम इनके ऑफिस तक चले जाते हैं, इनका ऑफिस जो है भदवा, कोटली भदवा में है, तो हम वहाँ तक जाते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये हमें हर चीज़ बता देते हैं। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो 50,000 से नीचे लोन है वो माफ़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो फार्मर हैं, यहाँ का जो किसान है, किसान का जो उतना कारोबार नहीं चल रहा है, इसलिए कम से कम जो 50,000 से ज़्यादा लोन है तो वो उसमें कोई बात नहीं है, उसको उतना वो फायदा उठा लेता है, उसका कुछ ना कुछ कोई बिजनेस कर लेता है, लेकिन जो 50,000 से नीचे जिसके पास लोन है, तो वो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोदी जी तक ये बात जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट इस लोन को माफ़ करे।
0: जिस तरह से आपने लोन की बात की, सर इसके अलावा भी क्या आपकी ये गवर्नमेंट से डिमांड रहेगी, इसके अलावा आखिर पर आप क्या हमारे दूसरे किसान भाइयों के लिए भी पैगाम देना चाहोगे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सके?
1: जब तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हर किसान को टाउन देता रहेगा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों को टाउन देता रहेगा और आते रहेंगे, गांव-गांव में जाते हैं, गांव-गांव में स्कीमें बताते हैं, तो हर किसान जो है बहुत ही मुतफ है, वो बहुत ही मतलब ये है कि पहले से बहुत ही अच्छा चल रहा है, भदवा का किसान जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है, जब से गवर्नमेंट स्कीमें दे रही है, जब से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनके शाना बशाना चल रहे हैं, तो इन्होंने जगह जगह पर अपना अपने सेंटर खोले हुए हैं और ये शाना बशाना साथ ही साथ चल रहे हैं और ये फायदा दे ही रहे हैं, तो सबको फायदा हो रहा है इसमें।
0: जिस तरह से आपने फायदे की बात की, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो हाल ये अभी भी ये प्रोग्राम चल रहा है HADP हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमें भी जानकारी मिलती है हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बहुत से किसान भाइयों को फायदा हो रहा है, क्या आपको भी इस प्रोग्राम से फायदा हुआ?
1: बहुत ही फायदा हुआ, हमको भी बहुत फायदा हुआ, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्होंने ये क्या नाम हमें टाइम पर ये राजमाश के बीज दिए हैं, मक्की के सीड दिए हुए हैं, और ये क्या पंप दिए हुए हैं, हर चीज़ दी हुई है, जो किसान जो कुछ जानता भी नहीं था वो भी आज कुछ ना कुछ कर रहा है, तो हम इस डिपार्टमेंट के मतलब बहुत ही आभारी हैं, तो ये हमें बहुत ही फायदा दे रहा है, और हम ही नहीं है, गांव-गांव में हर कोई, किसी को भी पूछो तो हर यही बता देगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले जो हैं तो हमें पहले से बहुत ही ज़्यादा फायदा दे रहे हैं, हर चीज़ सीड वगैरह और कुछ चीज़ें भी दे रहे हैं, जिससे हम घास भी अच्छी तरह से काटते हैं, मशीनें दे रहे हैं, हैं हर चीज़ दे रहे हैं, घास काटने की मशीनें दे रहे हैं, ये क्या नाम खुदाई बुवाई की मशीनें दे रहे हैं, तो चाहे वो क्या नाम इसमें सब्सिडी में ही दे रहे हैं, लेकिन किसान का फायदा ही है।
0: हंसराज जी, आपने हमारे प्रोग्राम किसानवाणी के लिए वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मेरी आखिरी फिर से मेरी रिक्वेस्ट

है सब डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट में, और किसान किसान वाणी की तरफ से मैं ये बात करता हूँ कि कम से कम 50,000 से नीचे जिसको लोन है वो लोन माफ होने चाहिए।

0: कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: मुमताजा जी, किसान लाए गलबात सुनी
3: जी।
2: यार उन्नत किसान न और जना उन्नत मेहनत करी रहा और है ना, देखना तेना उन्नत बनते
3: जी। बिल्कुल।
2: और दुयों गल की अपनो नौ अगर असी कमानू है तो अस बेड़ी सिर तस अपनी खेती बाड़ी भी करी सकते। जरूरी नहीं कि अस मुलाजम अलग मिले तो बेडी पोस्ट ही बड़गाम लेते, देखना इशू कोई नौ बोनू है नहीं, कम जने करनू है तो कुछ भी फील्ड में गए तो अपन उस नौ रोशन करी सकते। और असी पहले ये गल की मैं प्रोग्राम में कि भाई खेती बाड़ी से पेश हो है कोई घट नहीं
3: जी जी।
2: आखो ना किसान है अगर अस लगते कि तस्का बेची भी आन अस दुद्ध की जरूरत बेच असी तड़ी
3: जी जी
2: है ना, छंदे कहता भी मतलब कि अस लाग ना मेले अस ना कंचे अगर गान पार रहे निश्चय किसान है तो तस्का गान हुआ असी यानी मुँह मांगी सह दाम जर जो ले
3: जी जी
2: तड़ी असी तेन चीज़ गिननी जोर लो। मतलब है कि भाई सब जने काम करम अपने घरेले ले करम है ना
3: जी जी।
2: तो यकीनन महंगाई भी जब मार्केट में बोचो ना तो टमाटर के रेट पूछते हैं 80-90 रुपए किलो बिकी रहा है
3: जी। बिल्कुल
2: ठीक है। तो किना बोए कि अस अपने शार जुगाड़े जरूर आबाद करम आशा कब दुई बात सी रखम घरे जी, जी। आकता जमीनी जी गोबर बेगा ते साथ साथ ही अपने अंतरे दूध नालू बीजो तो अपने बच्चे भी सुखी
3: है
2: तो कुछ टाइम में लूनार ना बोए शाग दाल रही फेसी जी तक मैं चुप सारे दही सी खात साई सी खात है ना
3: जी। बिल्कुल।
2: पहले असि यार हो कि भाई अस अपने टाइम मेरी गल करम तो जरूर देशी बेची तो इस टाइम इसे घरे में बहुत थी लेकिन छा दूध जने अटूट बहुत थू
3: जी जी। बिल्कुल।
2: तो ऐसे कौन आज बच्चन तू सह थे भाई बिल्कुल ही नहीं स्टेमिनो नहीं नजरे की कमजोरी अस निके निके बच्चन तैन का फिट
3: बिल्कुल
2: है बिल्कुल ही थोड़ जरूर हठा तू उस टाइम तो बिल्कुल ही थेकी गा बिल्कुल हथी नहीं दस बारह 13 साल अगर अगर बच्चे की गल करता मस्त हथी नहीं टैंकरी कुन गल करनी अस अगर अस अपनी भी गल करम ना तो दस रुपए भाई अख दुई किलोमीटर पैदल चलू बोए तो तेस साल जी भी मत नहीं या तो फट आटो टाणो पेते थी या फिर गड्डी है
3: जी जी।
2: तो तेन बुजुर्ग जी शाबाश करा कि भाई जना एठा तक घोड़ी घोड़ी दूर गए तो दिलो जी वापस दिहाड़ी लेता इतने थी तो क्या तू काम तेना करते थी ना जमीन तेन बुजुर्ग करी कि हाथ ही करता तेनी तैयार की बनोरी और अस आस्ता आस्ता सी हैं सब कुछ बिगाड़ी रहा कुछ कैमिकल सी और कुछ जै भी असन तरीको लगते जंगल असें नष्ट करी सड़ा तकरीबन है ना। तो खैर तुसें ना हालात फिर नहीं होते हैं सब
3: जी। बिल्कुल।
2: शेक जुत जुत ना करनी करे फल तो हजू अगर अस ना सुधर मिले तो इजने वाले वक्त में जै 100 साल उम्र बहुत ही इंसान रही था छठन पर बुजुरी मी ना लगे कि भाई ऐठा है उबरी बद है बल्कि है घटी रहनी है। लिहाजा यह चीज़ असं सब जनी सोचनी है कि है खान पान सुधारम अपना वातावरण शुद्ध करम ते बच्चे के लिए सोचम कि चीज है जनरेशन है
3: जी जी।
2: अगर तरक्की कर ली तो कैंसर कर ली यानी अगर पढ़ाई करनी है तो कैंसर करनी है
3: जी जी। बिल्कुल।
2: छेल खा ले ताजू खा ले दूध नालू घी मक्खन अंतर बोलू माइंड जै मन जै दिमाग जै तेज बोनो है
3: जी जी।
2: देखना के दस अगर बेटी सकते
3: बिल्कुल छेल गल जो तुसें कि अस मतलब अपने घर में अगर अस अपने हाथ के लोरी अपनी सही चीज अगर अस खातम तो अस कौन जो अज तुसी रूल गई मतलब बीमारी जनन तो आम बेजोरी जन तो शुगर बो थायराइड मतलब इन्हें जो काफ़ी सारी जाना अज आम कुछ घर तुस गाथ कोई नजोल के अस हर कई जगह और अस कौन की सारी अस जैसे खान पीने से भी बड़ो फर्क

0: की शीशे थी बड़ा सरबेते तो अगर असी अपने मतलब सही अगर अस खातम अपने हाथी जा असी अगर अस जमीन है असी अगर अपने हाथी सब्जी लोरिए छेल सा तैयार किए रही है असम पा तो बोनो और असम कोई तशर तजो तुम बुरा असर नहीं पेनो राई खाद की गाल तो खाद अगर असी मतलब गोबरा सड़तम शरायन तो गोबरी से खाद बनातन ते सड़तम तो ऐसी इसी जमीनी इसी फसल कोई नुकसान न पुजे ना इसी सेहती पुजे तो असें अगर कुंदो तो जने ने केमिकल वाली खाद बेचन या कुंदो तो नोरी काफ़ी सारी जन केमिकल के इसे किसान इस्तेमाल करता ने अपनी जमीनी तो अगर अस कुंदो तन खादे जाए तो खादरी गल करम तो असी मीता जांच केर बोली अपनी जमीन जांच केर बोली तो तैसा अगर जेतरिक जे जरूरत है जरूरत हिसाब से तो अस अगर तेतरिक जे अस डिपार्टमेंट कर अगर अस सलाह गिनो तो फिर अगर अस तेतरिक जे अपनी जमीन छाटन भी तो तसेरा तेतरो बुरा असर नहीं पेनो लेकिन अस कोशिश करो अस ज्यादा कर ज्यादा जाए तो गोबर जाए तो छड़ैनता या गोबरे खाद जाए तो अगर अस ज्यादा भी इस्तेमाल कर मिले अपनी जमीनी तो कोई अस न तलर तेतरो नुकसान न पुजे इसी जमीन ही नहीं इसी फसल ही नहीं तो असम कुंजोतन तस कर कोई तेतरो डर न पोए तो असी कुंजोतन अगर अस छेल सारे अपनी जै सेहत बचानी है तो असी तो ले ली मतलब इन्हें जी गल को ध्यान रखना ही अस अगर जेतरो ज्यादा ही तो अपनी सही कुंजोतन छेल जाना इन अंग्रेजी खादन जन केमिकल वाली न तन कर बचो और ज्यादा से ज्यादा अस मतलब गोबर अपनी जमीनी अपनी फसल इस्तेमाल करो और असी कुंजोतन फसल भी लानी तो अस कुंजोतन तेरी जे लाम बीजा छेल लाम और कीजिए कि आज दिहाड़ को दिहाड़ जाए तो सुधी तरक्की हो रही है साइंस बेदी तरक्की किए रही है बीजा भी असन छेल मेलतन और अस सही बीजा भी अस कुंदोतन तेरा बीजा नहीं लाना कि जन्म कोई मिलावट बोए अस घरे अपने कीजिए कि अगर डिपार्टमेंट से आप शराब तो रख तुम तो असन कुंदोतन जानकारी मिल चुके अस घरे बीजा कैंसर सी तैन बचे तो कीड़न का बचाने लिए तैन ट्रीटमेंट जब होते सही ट्रीटमेंट अस आपू कर सकता
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: अपनी जाए तो सही चीज़ है अस मतलब ले सक तुम अपनी जमीन में और असन छेर जाए तेरी जाए तो फायदा पुजी गाते तो अस अपने शून्य वाल ना रखे इन सी तेरे गल जोते बोतम ते आज जब जोन चाहता हूँ कि जय इशे मतलब किसान तो तेना ज्यादा से ज्यादा कोने की जनी ना अंग्रेजी खादन तो तेन को घट इस्तेमाल करन और ज्यादा से ज्यादा जाए तो गोबर
1: गोबरी खाद
0: गोबरे वाली खाद बोचे
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: ताए अपनी जमीन ले मतलब तेरी सेहत ले मिट्टी जाए असन जा तेरी फसल मेल चे तो ता सेर सेहत भी सोचनी है तो अस कुंदो तन तखन गई तो अस का फायदा साल तुम जता लिया अस तसेरी एर गैश भी सही जार केर मिले ते ऐसे साथ ही मौसमी जा जानकारी ता मौसमी जानकारी दे साड़ा तुस
1: जी बिल्कुल मुमताज़ जी, मौसम भाई यारा सुहानो है, वो तो सुहानो मनती है सर,
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी
1: लहरा जजलोज है, मौसम काला भी थोड़ी है हमरे में बिदलार रानी है,
0: जी जी
1: ते बाकी बूंदा बांदी बही सकछे, ठीक
0: जी
1: है,
0: जी
1: ते उन्हीं ऐसे साथी से इसे प्रोग्राम वक्त है मुकम्मल पीगा, ते प्रोग्राम सुनने वाले से भी सहतन कर इजाज़त मांगता हूँ,
0: जय
1: जय हिंद।
0: हिंद।

अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम किसान वाणी। ये आकाशवाणी भदरवाह FM 101 MHz पर। समिन थोड़ी ही देर में हिंदी में खबरें और उसके फौरन बाद यानी ठीक 6:05 पर अंग्रेजी में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रिले का इंतजार कीजिए।

0: विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बिसे सिंह मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी बतरवा है FM 101 MHz पर। समय शाम के ठीक 6:10 हुए हैं। अब समाप्त कीजिए अब से लेकर रात 10 बजे तक रिले किए जाने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से बस थोड़ी देर में ठीक 6:15 पर डोगरी में खबरें और तबसरा आकाशवाणी जम्मू से रिले किया जाएगा।

रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9 और रात 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी।

0: पंचायती राज व्यवस्था राएं होए दे समावेशी विकास की उजागर किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें अज्ज श्रीनगर दे सिविल सचिवालय च मंत्रीमंडल दी बैठक दी अध्यक्षता की। मौजूदा बरे च श्री माता वैष्णो देवी दी यात्रा करने आले श्रद्धालुएं दी गिनतरी 50 लाख दा आंकड़ा पार करी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने औंदी अमरनाथें दी यात्रा लई ट्रैफिक ते यात्रा सरबंधी परामर्श जारी कीता है ते सुरक्षा बलें अमरनाथ यात्रा 2026 दी तैयारियें दे किसे दे तौरा पर जम्मू आले आधार शिविर च इक व्यापक मॉक ड्रिल दा सरिस्ता कीता। खबरें दी तफसील कने अभिलाषा शर्मा।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें अज्ज केंद्री पंचायत राज मंत्रालय ते जम्मू कश्मीर प्रशासन आसेआ आयोजित सेवा राएं समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला गी संबोधित कीता। एलजी सिन्हा होरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई च होई दी ऐतिहासिक तब्दीलिएं ते त्रऊं स्तरी पंचायती राज प्रणाली राएं होए दे समावेशी विकास पर लोह पाई। उनें आखेआ जे बरे 2020 च केंद्र दी तरफा इक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने लई कम्म शुरू कीता गेआ जित्थे सरकार लोकें दे घरें तक्कर पुज्जियै उनेंगी सेवा उपलब्ध कराई सकै। उनें गलाया जे लोकें गी पैह्ली तरजीह देने आले नजरिए कन्नै असें सार्वजनिक सेवा देने च क्रांतिकारी बदलाव आनने दा कम्म शुरू कीता ऐ। उनें अग्गे आखेआ जे 2020 च छड़ी 35 ऑनलाइन सेवा हियां जिसलै कि 2023 तक एह् गिनतरी 1100 कोला मती होई गेई। उनें इब्बी आखेआ जे जम्मू कश्मीर ई सेवा उपलब्ध कराने च अब्बल रेहा ऐ। इस मौके पर बोलदे होई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आखेआ
2: 3 वर्ष में मुझे याद है 1100 से ज्यादा सेवाएं यहाँ लोगों को मिलने लगी थी और अनेक बड़े राज्यों को जम्मू कश्मीर ने पीछे छोड़ दिया था। ई सर्विस डिलीवरी की रैंकिंग में नंबर 1 जम्मू कश्मीर हो गया मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर। सामान्य नागरिक की सुविधा के लिए ब्लॉक दिवस, थाना दिवस, बैक टू विलेज ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे जिससे आम आदमी को सहूलियत हो सके, उसकी सुनवाई हो सके। विविधता में एकता, सहयोग में सामर्थ्य और सेवा से समृद्धि, जिस विषय पर हम सब इकट्ठे हुए हैं।
1: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें अज्ज श्रीनगर दे सिविल सचिवालय च मंत्रीमंडल दी बैठक दी अध्यक्षता कीती। बैठक च जम्मू कश्मीर च शासन गी मजबूत करने, विकास च तेजी आनने ते सार्वजनिक सेवाएं दी आपूर्ति च सुधार करने दे मकसद कन्नै कई प्रस्तावें ते नीतिगत मामले पर चर्चा कीती गई। तोआई 18वीं तिब्बती पार्लियामेंट इन एग्जाइल दा इक शिष्टमंडल बी श्रीनगर च मुक्खमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें गी मिलेआ। शिष्टमंडल जम्मू कश्मीर सरकार दे समर्थन ते खातर तवज्जो लई आभार प्रगट कीता। एह्दे अलावा जम्मू कश्मीर च रवा'रदे तिब्बती समुदाय दे लोकें दी दिक्कतें ते मुद्दे बारे बी गल्लबात कीती गेई। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ने मौजूदा बरे च इक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासल कीती ऐ की जे जंदे रोज तक्कर माता दे दरबार च मत्था टेकने आले श्रद्धालुएं दी गिनतरी 50 लक्ख दे आंकड़े गी पार करी गई ऐ। कुल 50,70,000 श्रद्धालुएं पवित्र तीर्थ यात्रा कीती ऐ। एह उपलब्धि पिछले बरे दी इस्सै अवधि दे मुकाबले मती ऐ। इस्सै अवधि दौरान पिछले बरे तकरीबन 39,84,000 श्रद्धालुएं पवित्र गुफा दे दर्शन कीते हे। आकाशवाणी जम्मू दे प्रादेशिक समाचार एकांश ने पहाड़ी भाषा लई कैजुअल न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर ते स्टेनोग्राफर दे पैनल च शामल होने लई जम्मू कश्मीर दे रौह्ने आले 21 या 50 बरें तोड़ी दी उमरी दे इच्छुक मेदवारें कोला आवेदन मंगे न। कैजुअल न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर लई घट्टो घट्ट योग्यता, कुसै मान्यता हासल यूनिवर्सिटी थमां ग्रैजुएशन ते पहाड़ी भाषा दी शैल जानकारी दा होना है। न्यूज रीडर लई प्रसारण लई मुआफक खरी आवाज दा भी होना जरूरी है। स्टेनोग्राफर लई घट्टो घट्ट योग्यता, कुसै मान्यता हासल एजुकेशन बोर्ड थमां 12वीं पास होना ते पहाड़ी भाषा च खरी जानकारी दा होना है। कन्नै गै कंप्यूटर पर पहाड़ी भाषा च टाइपिंग दी स्पीड 25 कोला लेइयै 40 लफ्ज फी मिंट होना लोड़चदी। आवेदन दी हार्ड कापी हैड आफ न्यूज रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी पंच तीर्थी जम्मू पिनकोड 1800001 दे दफ्तरै च दस्ती जमा करवानी होग। एह्दे कन्नै सब्बै जरूरी दस्तावेज ते आवेदन शुल्क भी होना चाहिदा जेहड़ा वापस नहीं होग। सामान्य श्रेणी दे मेदवारें लई एह् शुल्क 355 रुपये ते SC/ST/OBC मेदवारें लई 265 रुपये 18% GST सने ऐ। एह् शुल्क प्रसार भारती आकाशवाणी जम्मू दे बैंक खाता नंबर 1058238712 SBI मेन ब्रांच हरी मार्केट जम्मू च ऑनलाइन भी जमा कीता जाई सकदा है। IFSC कोड SBIN 000657 है। शुल्क जमा कराने दे बाद मिले दे स्क्रीनशॉट दा प्रिंट आउट या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन ID आवेदन दे कन्नै जरूर होनी लोड़चदी। आवेदन करने दी खीरी तरीक 19 जुलाई 2026 ऐतवार है। मती जानकारी टेलीफोन नंबर 0191254 6658 ते 9697177241 पर लैती जाई सकदी है। तफसीली इश्तेहार ते आवेदन फार्म साढ़ी वैबसाइट www.newsonair.gov.in पर होम पेज दे अखीरे च वैकेंसीज आइकन पर उपलब्ध है।

0: एक खबरां साड़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एदे अलावा तुसे खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे हो।
1: एक खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू परा सुनार्दे हो, बाकी दियें खबरें कन्ने जगमोहन शर्मा।
2: श्री अमरनाथ जी दी यात्रा 2026 कोला पैहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने इक व्यापक ट्रैफिक ते यात्रा परामर्श जारी कीता है। आकाशवाणी दे जम्मू संवाददाता ने जानकारी दित्ती है जे यात्रा दे लंघने दौरान किश समय लई नवयुग सुरंग च आम गड्डियें दे गुजरने पर रोक लग्गी दी रौह्ग। कश्मीर घाटी थमां जम्मू आने आलियें गड्डियें गी बडलै 11:30 बजे कोला पैहले लंघने दी इजाजत नेईं होग, जिसलै जे जम्मू थमां घाटी आली बक्खी जाने आलियां गड्डियां दपैह्री 3 बजे दे बाद उत्थुआं नेईं लंघी सकङन। अमरनाथें दी यात्रा दी पछोकड़ै च सुरक्षा दे निग्गर बंदोबस्त कीते गेदे न। एह्दे तैह्त अज्ज सुरक्षाबलें आसेआ यात्रा दे जम्मू आह्ले आधार शिविर च इक अभ्यास यानी मॉक ड्रिल दा सरिस्ता कीता गेआ, जेह्दे च राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, जम्मू कश्मीर पुलसा दे विशेष कार्रवाई समूह SOG ते CRPF आसेआ सांझे तौरा पर अभ्यास कीता गेआ। इस अभ्यास दा मकसद यात्रा दौरान बक्ख-बक्ख सुरक्षा एजेंसिएं बश्कार तालमेल गी यकीनी बनाना हा। साढ़े जिला संवाददाता राही कपूर दी इक रिपोर्ट।
3: इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवानों ने संयुक्त रूप से कम्बिंग और क्लियरिंग ऑपरेशन चलाया। अधिकारियों के अनुसार मॉक ड्रिल का उद्देश्य यात्रा के दौरान किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच संवान्य और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन करना था। सुरक्षा बलों ने बेस कैंप और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। जम्मू से आकाशवाणी के लिए राही कपूर।
2: साइबर पुलिस स्टेशन रामबन ने गुआचे दे 35 मोबाइल फोनें दा पता लाइयै उनेंगी बरामद कीता है ते उनेंगी उंदे मालकें तगर पुजाया। फोन गुआचने दियें शिकायतें पर कार्रवाई करदे होई पुलिस स्टेशन दी इक विशेष टीम ने एदे पर कार्रवाई शुरू कीती, जेदे च जांच शुरू करने कोला लेइयै ट्रैकिंग प्रक्रिया राएं फोनें दा पता लाना ते उंदी बरामदगी शामल है। ओदे बाद सारियां औपचारिकतां पूरियां करी लैने दे बाद एह मोबाइल फोन उंदे मालकें दे सपुरद कर दित्ते गे। एह सारी कार्रवाई SSP रामबन दी दिक्ख-रिक्ख मार्गदर्शन हेठ की गई। इस बारे जानकारी देते हुए रामबन के अतिरिक्त पुलिस सुपरिंटेंडेंट मुजीबुर रहमान ने दसिया
4: कि 2 महीने में कोई 35 मोबाइल फोन जो है जो घूमे हुए थे लोगों के वो रिकवर किए हैं। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है CEIR करके है, जिसमें आप ऑनलाइन कंप्लेंट खुद भी कर सकते हो और या पुलिस के थ्रू से भी करा सकते हो। और उसके बाद जो IMEI नंबर होता है, हर फोन का अपना अपना होता है, वो एक ब्लैकलिस्ट हो जाता है और उस फोन में जब कभी कोई भी सिम डालेगा लोड जनरेट हो जाता है, तो जिसे फिर हमें अलर्ट आ जाता है। तो इसमें जो हमारा जो प्रयास है वो बड़ा कंटिन्यूसली, और जैसे भी हमारे पास 30-40 हो जाते हैं तो हम जो उनके राइटफुल ऑनर्स हैं उनको बुला के उनके हवाले जो है ऊपर।
2: जम्मू पूर्व विधानसभा के थमा परेड ग्राउंड कश स्थित ऐतिहासिक सब्जी मंडी के पुनर्विकास लिए विधायक युद्धवीर सेठी होरें नींह पत्थर रखा। 5,88,00,000 रुपए की इस परियोजना का मकसद शहर की सभने शा पुराने सब्जी बाजारें चा एक इस सब्जी मंडी की आधुनिक बनाना है। जम्मू म्युनसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर ते जम्मू स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ देवांश यादव और भी इस मौके मौजूद हे। इस परियोजना कन्ने विक्रेताएं ते खरीददारें लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, साफ सफाई, ट्रैफिक प्रबंधन ते और बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाईयां जाई सकंगन। एदे च कवर कीते गेदे वेंडिंग शेड, दुकानें दे नवें ब्लॉक, उन्नत जल निकासी, साफ सुथराई दियां सुविधा शामल होंगन, तां जे इक मता संगठित ते गाहकें दे अनुकूल बाजार वातावरण बनाया जाई सकै। JMC कमिश्नर डॉ देवांश यादव होरें इस परियोजना बारे और मती जानकारी दिंदे होई आख्या,
5: आज ये एक और मुश्किल प्रोजेक्ट जो कि रुका हुआ था पहले से, फाउंडेशन की आज रखी है। पुरानी सब्जी मंडी पूरे शहर के लिए, ओल्ड सिटी के लिए एक बहुत पुराना आने का स्थान रहा है। यहाँ पे माताएं बहनें हजारों की तादाद में आती हैं। इसकी कैपेसिटी बढ़े, यहाँ पे लोग सेफली आ सके, कोई भी फायर का इंसिडेंट ना हो, सेफ्टी मेंटेन रहे और जो भी खाने का वेस्ट हो वो कम्पोस्ट बन जाए, उसके माध्यम से एक मॉडल फ्रूट मंडी बनाने के लिए आज टेंडर अलॉट होके काम शुरू होने जा रहा है।
2: कश्मीर प्रांता दे कई सारे सिंच कल बरखा बरने दे बाद समूलची घाटी दे मौसम च चानचक बदलाव दिखने गी लब्बा करदा है, जिसलै जम्मू प्रांता च मौसम आमतौरा पर खुश्क बने दा है। उहां किश इलाकें च गासै पर बदल कनोए दे रहे ते कुदरत दा भी हल्की कनी कनून दे अलावा बरने दी कोई जानकारी नहीं है।
1: अखीरे च खास खबरां इक बारी फ्ही। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें पंचायत राएं सेवा उपलब्ध करवाने संबंधी सेवा से समृद्धि कार्यशाला गी संबोधित कीता। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें अज्ज श्रीनगर दे सिविल सचिवालय च मंत्रिमंडल दी बैठक दी अध्यक्षता कीती। मौजूदा बरे च श्री माता वैष्णो देवी यात्रा करने आले श्रद्धालुएं दी गिनतरी 50 लाख दा आंकड़ा पार करी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने औंदी श्री अमरनाथ लई ट्रैफिक ते यात्रा सरबंधी परामर्श जारी कीता है। एदे कन्ने गै खबरें दा बुलेटिन समाप्त होआ।
6: आओ करचै गल गुआंढियें दी। पाकिस्तान एक बारी फी अपने गै बनाए गेदे विरोधाभास दे जाल च फसदा नजरिया वरदा है। एक पेठा गुआंढी मुल्क गंभीर आर्थिक संकट, बद्दे कर्ज, महंगाई ते राजनीतिक अस्थिरता कन्ने दो चार होआ है। उत्थे गै दुई पेठा पाकिस्तान दे गैर कानूनी कब्जे आले जम्मू कश्मीर ते बलूचिस्तान च जनता दे असंतोष की लोकतांत्रिक सरिस्ते राए गल्लबात दे बजाए दमन ते जोर जबरदस्ती कन्ने दबाने दा जतन किया जा रहा है। पिछले 15 दिनें थमां पाकिस्तान दे नजायज कब्जे आले जम्मू कश्मीर च जारी विरोध प्रदर्शन हुन एक नमें चरण च प्रवेश करी चुके दे। हुन महिला ते स्कूली बच्चें तकर शिड़कें पर आइयै आजादी ते पाकिस्तान दे कथित तौर पर कब्जे खिलाफ आवाज बुलंद करा करदे न। इस सब किश पाकिस्तान दे उस दावे पर गंभीर सवाल पुटदे न जेदे च ओह अपने आपा गी इक लोकतांत्रिक मुल्ख दसदा है। लोकतंत्र दी मूल भावना जनता दी आवाज सुनने ते असहमति दा सम्मान करने च निहित हुंदी है। पर पाकिस्तान दे नजायज कब्जे आले जम्मू कश्मीर ते बलूचिस्तान दी तस्वीर ते किशोर गै कहानी दसदी ते आखदी है। पीओजेके च चला'रदे आंदोलन दी सभनें थमां महत्वपूर्ण गल्ल एह है जो उनें तगर छड़ा राजनीतिक कार्यकर्ताएं तगर गै ओह सीमित नहीं रही गया। हुन ओह महिलाएं, युवाएं ते छात्रें दी हिस्सेदारी दी इस अर्थ दित्ती है जे असंतोष समाज दे व्यापक वर्ग च फैली चुके दा है। जिसलै कुसै खेतर च बच्चे ते महिला भी सिड़के पर उतरने लई मजबूर होई जांदे न तां इह छड़ा राजनीतिक विरोध नहीं सगुआं शासन व्यवस्था प्रति बड़े पैमाने पर अविश्वास दा प्रतीक बनी जांदा है। इसै दौरान बलूचिस्तान थमां खबर सामने आई। प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलोच गी आजीवन कारावास दी सजा दित्ते जाने दी खबर थ्होई। इस गल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय सतह पर सारें दी चिंता गी बधाई दित्ता। महरंग बलोच लम्मे चिरे थमां कथित तौर पर मानवाधिकार दी खिलाफवर्जी, जबरन गायब कीते गेदे लोकें ते बलूच समुदाय दे अधिकारें दी आवाज पुटदे आए न। पाकिस्तान दी सभनें थमां बड्डी समस्या एह है जो ओह अपने गै नागरिकें दी आसे तंगें गी समझने ते संबोधित करने च लगातार असफल रहा है। भावें ओह पाकिस्तान दा कोई भी इलाका की नहीं होवे, बलूचिस्तान होवे या फ्ही खैबर पख्तूनख्वा, बक बक खेतरें च जनता लम्मे चिरे थमां राजनीतिक अधिकारें, आर्थिक मौकें ते सम्मानजनक अगुवाई दी मंग करारदी है। पाकिस्तान दे अपने गै नागरिक जिसलै ओहदे खिलाफ आवाज बुलंद करा करदे न तां ओह हमेशा भारत खिलाफ बोलना शुरू कर दिंदे है। इह ओहदा पुराना अपने आप गी बचाने दा इक तरीका है। हुन पाकिस्तान दे मंत्री ने भारत गी पानी दे मुद्दे पर लड़ाई दियां धमकियां दित्तियां न। हाल च गै पाकिस्तान दे इक मंत्री आसेआ एह आखना जे भारत जेकर पानी गी नियंत्रित करने दी कोशिश करो तां पाकिस्तान युद्ध करो। जिस मुल्क दी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय माली संस्थानें ते कर्जे दे सारे चलारदी होवे, उत्थुआं दी जनता महंगाई ते बेरोजगारी दी मार चलारदी होवे, तां इह बयान आंतरिक असफलताएं थमां ध्यान भटकाने दा जतन दा नजरिया आउंदा है। पाकिस्तान दा रवैया भी इस पूरे परिदृश्य च साफ तौर पर सामने आया है। दरअसल पीओजेके ते बलूचिस्तान च उभरदे असंतोष छड़े कानून व्यवस्था गी गै चुनौती नहीं हन, इह पाकिस्तान दे संघीय ढांचे, लोकतांत्रिक संस्थाएं ते शासन मॉडल दे सामने एक बड़ा बड़ा सवाल है। जनता दी आसे मेदें गी बंदूकें, जेल ते दमन दे कन्ने दबाना मुश्किल है ते इयां लम्मे चिरे तगर गुजारा कीता भी नहीं जाई सकदा। इतिहास गवाह है जिसलै लोकें दी राजनीतिक ते सामाजिक मंगें गी लगातार अनसुना कीता जांदा है तां असंतोष होर भी गहरांदा जांदा है। गल गांडियें दे अज दे शुमारे च बस इन्ना गै। कल करगे कुसी और विषय पर गल्लबात।
7: ये आकाशवाणी भद्रवाह FM 101 MHz पर समीन शाम के ठीक 6:30 हुए।

स्वामी ने एक जरूरी सूचना सुनिए। माता रानी के आशीर्वाद से वार्षिक चंडी माता की यात्रा चनोद भद्रवा से शोगली टॉप शिव गली दुडू बसंतगढ़ के लिए प्रारंभ होने जा रही है। यात्रा 26 जून 2026 को सुबह 7:30 पर प्राचीन मंदिर चनोद से शुरू होगी और 30 जून को वापस भद्रवा पहुंचने के साथ संपूर्ण होगी। यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए हर पड़ाव पर लंगर और रात को ठहरने का इंतजाम है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने साथ कंबल, गर्म कपड़े, छाता, टॉर्च और अन्य जरूरी सामान अवश्य लेकर आएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, नंबर है 9906182626। कॉन्टैक्ट नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 9906182626। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी भद्रवा स्टेशन से समीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शामे गजल। प्रोग्राम में आगे आइए सुनते हैं अनु दुबे की आवाज में ये दर्द भरी गजल।

लगाकर दिल दुखाया नहीं करते, हंसते हुए चेहरे को रुलाया नहीं करते। अरे जब दर्द दूर नहीं कर सकते तो दर्द देते हैं क्यों हो, अपने चाहने वाले को इस कदर सताया नहीं करते।

अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। ये आकाशवाणी बदरवा है FM 101 MHz पर। सामिन थोड़ी ही देर में ठीक 7 बजे हालात व वाकत पर मबनी प्रोग्राम शहर बेन, 7:30 पर कश्मीरी में खबरें, उर्दू में खबरें 7:40 पर और रात 8 बजे वादी की आवाज़ प्रोग्राम आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा। सामिन रिले का इंतज़ार कीजिए।

0: आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के समीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूदात हैं मरकजी पंचायती राज वजारत की तरफ से श्रीनगर में कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, कश्मीर के नौने

0: साल की जान बचाई पोलैंड के रजाकार ने। पुंछ जिले में जल जीवन मिशन की नाकामियां और साधना टनल के लिए अभी तक टेंडरिंग भी शुरू नहीं हो पाई। मौजूदात की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 9018074333 9018074333।
5: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
6: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
7: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ,
8: वाह इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
9: पता नहीं मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा।
10: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
9: अच्छा भाभी,
10: और हाँ मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच लें कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
9: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
11: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
12: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: सेहत जो हर एक इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तो यह सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमात हिज कमी, यम चीज से रुकावट बनान तो जरूरी इलाज इथी रोजान। मगर वन अत हल JK सेहत ऐप, यह तुहद डिजिटल साथी इस सेहतस मुताबिक कुन तो जरूर तो ख्याल थवान। यह ऐप एंड्रॉइड तो आईफोन दुशवन मज दस्तियाब। ऐप मज डॉक्टर सन्ज अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल झांडन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हावन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन इस अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक की मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिज जानकारी, बेचे अत सित प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अख साध शहरी छो, JK सेहत छो सारनी सूत, सिंपल, सेफ तो सिर्फ तोहे खतर।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
0: शर्मीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात मुनक्किद कराने की मांग खासे वक्त से हो रही है। लोग चाहते हैं कि जमहूरियत को बुनियादी सतह पर फाइल और मजबूत बनाने के संजीदा इकदाम किए जाएं और इस गरज से पंचायती इदारों का कयाम नागुजीर है। तवक्को की जा रही है कि आइंदा चंद माह के दौरान जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। ये भी तवक्को है कि पंचायतों को तामीर तरक्की के लिए खतीर रुकूमत मैसर कराई जाएंगी ताकि गांव देहात में खुशहाली का एक नया दौर शुरू हो। इसी दौरान आज पंचायती राज के

0: कृषि वजारत ने SKICC श्रीनगर में सेवा से समृद्धि उन्वान के तहत एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया। वर्कशॉप में जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और कर्नाटक से आए नुमाइंदों ने शिरकत की। वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बतौर मेहमान खसूसी, जबकि देही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार मेहमान जीविकार की हैसियत से मौजूद थे। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू।
1: वजारत पंचायती राज हुकूमत हिंद की जानिब से आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर SKICC श्रीनगर में सेवा से समृद्धि पंचायतों के जरिए अवामी खिदमात की फराहमी के उनवान से एक इलाकाई वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पंचायतों के जरिए अवामी खिदमात की फराहमी को मजीद मुअसर बनाना, दही इलाकों में मयारी जिंदगी को बेहतर बनाना और निचली सतह पर अवाम दोस्त हुक्मरानी को फरोग देना था। इस वर्कशॉप का इनेकाद कॉमन सर्विस सेंटर, स्पेशल पर्पज व्हीकल, वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और महकमा दही तरक्की व पंचायती राज जम्मू कश्मीर के इश्तराक से किया गया। वर्कशॉप में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले पंचायती नुमाइंदों, मुंतखब अवामी नुमाइंदों, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, माहिरीन तालीम और दही तरक्की से वाबस्ता इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वर्कशॉप का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पंचायती राज इदारे निचली सतह पर जमहूरियत को मजबूत बनाने, अवामी शमूलियत को फरोग देने और दही तरक्की को नई समत देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायतों को माली और इंतजामी इख्तियार देने, अवामी नुमाइंदों को बेपा इख्तियार बनाने और शराखती मनसूबा बंदी को फरोग देने से दही तरक्की को नई रफ्तार मिली है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डिजिटल गवर्नेंस के मैदान में नुमाया पेशरफ्त हुई है। उन्होंने बताया कि साल 2020 में जहां चंद दर्जन ऑनलाइन अवामी खिदमात दस्तियाब थी, वहीं आज इनकी तैदाद 1100 से तजावज कर चुकी है, जबकि 98% से ज्यादा पंचायतें डिजिटल तौर पर मुंसलिक हो चुकी है। मौसूफ LG ने कहा कि बैक टू विलेज और ब्लॉक दिवस जैसे इकदाम से शफाफियत, जवाबदेही और अवामी शिकायत के इजाले के निजाम को मजीद मजबूत बनाया गया है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मजबूत पंचायती राज इदारे विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदाई ताबीर करने में कलीदी किरदार अदा करेंगे और इसके लिए अवामी शिरकत, जदीद टेक्नोलॉजी और मकामी इख्तियारात को फरोग देना जरूरी है। इस मौके पर दही तरक्की व पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर में डिजिटल गवर्नेंस पंचायतों को बाइख्तियार बनाने और आवाम दोस्त खिदमात की फराहमी के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। उन्होंने वजारत पंचायती राज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस नवीयत की वर्कशॉप तजुर्बात के तबादले और बेहतर हुक्मरानी के फरोग में अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने कहा कि बाइख्तियार पंचायतें अवामी शमूलियत और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के दरमियान बेहतर तालमेल, दही तब्दीली और जामे तरक्की के लिए नागुरीज है। मौसूफ वजीर ने इस अजम का इरादा किया कि हुकूमत पंचायतों और मुंतखब नुमाइंदों को मजीद मजबूत बनाकर पायदार तरक्की और विकसित भारत के विजन को हकीकत का रूप देने के लिए काम जारी रखेगी। वजारत पंचायती राज के सेक्रेटरी विवेक भरद्वाज ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी निचली सतह पर हुक्मरानी के अंदाज को बदल रही है और पंचायतें अब सिर्फ रिवायती इंतजामी इदारे नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुख्तलिफ अवामी खिदमात फराहम करने वाले मुतहरिक इदारों में तब्दील हो रही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी इकदाम से हुकूमती अमल को आसान, शफाफ और अवामी शराकत पर मबनी बनाया जा रहा है। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली ग्राम पंचायतों और कॉमन सर्विस सेंटरों की खिदमात को भी सराहा और कहा कि ये इदारे दही इलाकों में अवाम तक सरकारी खिदमात पहुँचाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। CSC SPV के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रवीण चंदेकर ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर्स दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सर्विस नेटवर्क्स में शामिल होते हैं और ये मराकज टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम तक बुनियादी खिदमात पहुंचाने, डिजिटल शमूलियत को फरोग देने और रोजगार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वर्कशॉप के दौरान मुख्तलिफ तकनीकी इजलास, पैनल मुबाहिसे और रियासती सतह के तजुर्बात पर मबनी सेशन मुनक्किद किए गए, जिनमें डिजिटल तब्दीली, अवामी शराकत, इख्तिरा, शफाफियत और अवामी खिदमात की बेहतर फराहमी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली ग्राम पंचायतों और कॉमन सर्विस सेंटरों को एजाजात से नवाजा गया। हरियाणा के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर प्रदीप यादव और उत्तर प्रदेश के संतोष कुमार को आवामी खिदमत की

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सदर जमहूरिया के हाथों दूसरे मरहले के तहत 2026 के पदम एजाजात तफवीज। अवार्ड याफ्तगान में जम्मू कश्मीर के ब्रिजलाल बट भी शामिल। वजीर आजम ने अफसरों को अपनी ताजा दम सोच और जोश खरोश से विकसित भारत 2047 का ख्वाब पूरा करने में अपना रोल अदा करने की दी सलाह। कौमी ई खदमात की फराहमी में जम्मू कश्मीर अव्वल नंबर पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने SKICC में सेवा से समृद्धि वर्कशॉप से किया खिताब। और राबिता प्रोजेक्टों की पूरे मियार के साथ बर वक्त तकमील यकीनी बनाने पर वजीर आला का जोर।

0: पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनकी पुलिसिंग से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के इंटरवेंशन से, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके इंटरवेंशन से जब हम नहीं करेंगे तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह हम इससे निजात पा ही लेंगे।
1: आखिर पर मौसम, महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 29.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:21 और गुरुबे आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
2: समईन आदाब, आज का तबसरा लिए मैं शबीर उज़्ज़मा। ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्जरलैंड में हालिया जंगबंदी के बाद कतर और पाकिस्तान की सालसी में बातचीत का पहला दौर खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर हुआ है। भारत समेत आलमी मईशत और आलमी अमन के लिए बातचीत का ये दौर उम्मीद अफजा रहा है। इससे पहले दोनों मुल्कों ने तवील सिफारतकारी के बाद, जिसमें सालसों का कलीदी रोल रहा 107 रोजा जंग के खात्मे के लिए, मफाहमत की एक यादाश्त पर पिछले हफ्ते दस्तखत किए थे। मफाहमत की इस यादाश्त में जंग खत्म करने और 60 दिनों में मुजाकरात के जरिए बाहमी मसाइल का सिफारती हल ढूंढने पर इत्तेफाक किया गया था। ये बात सभी जानते हैं कि फरवरी में अमरीका और इसराइल के ईरान पर फजाई हमले शुरू किए जाने से खित्ते में जबरदस्त जंग छिड़ गई थी और ईरान की जवाबी कार्रवाइयों से इस अहम खित्ते में तश्वीशनाक सूरतहाल पैदा हो गई थी। इसी खित्ते में आबनाए हरमुज से दुनिया के 20% तेल और गैस की नकलो हमल होती है और ये नकलो हमल मजदूद हो जाने से पूरी दुनिया में माशी बुहरान पैदा होने लगा था और रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही थी। इब्तदाई समझौते में हर महाज पर मुकम्मल जंगबंदी, आबनाए हरमुज को बहरी नकल हमल के लिए फौरी तौर पर खोले जाने और ईरान पर अमरीका की तरफ से आयद बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही ये भी तय पाया है कि 60 दिनों के अंदर ईरान के जौहरी प्रोग्राम, ईरान पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां हटाने और ईरान के मुंजमिद असासे वागुजार करने जैसे मामलात पर हतमी मुआहदा करने के लिए बातचीत होगी। फरीकैन में बातचीत के पहले दौर से कबल ही इसराइल की तरफ से जनूबी लिबनान में खून रेज फौजी कार्रवाइयों पर मनाकशा खड़ा हुआ और इस कशीदगी की वजह से स्विट्जरलैंड में बातचीत के इस पहले दौर के निकाद में अड़चने पैदा हो गई थीं। अब जबकि बातचीत का ये दौर न सिर्फ मुनक्द हुआ है बल्कि मुस्बत अंदाज से आइंदा मुजाकरात के लिए नक्शराह तैयार करके मुकम्मल हुआ है, फरीकैन के दरमियान हतमी मुआहदे की उम्मीद बढ़ गई है। बातचीत के पहले दौर के बाद अब आबनाए हरमुज जहाजरानी के लिए खुल गई है और अमरीका ने ईरान की तेल की बरामदात पर पाबंदियां 60 दिनों के लिए हटाई है। ये दोनों बातें खित्ते और आलमी मईशत के लिए मुस्बत हैं। ताहम मुजाकरात के आगे बढ़ने के ताल्लुक से लिबनान की सूरतहाल पर सबकी नजर रहेगी। देखना ये होगा कि अमरीका इसराइल को लिबनान में फौजी कार्रवाइयां रोकने के सिलसिले में किस कदर मुअसर साबित होता है। दूसरा अहम नुक्ता ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मुस्तकबिल है। मुजाकरात के पहले दौर में अमरीकी वफद की कयादत करने वाले नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि इन मुजाकरात में आइंदा बातचीत के लिए ठोस बुनियाद रखी गई है। एक अहम पेशरफ्त में स्विट्जरलैंड मुजाकरात से पहले ईरानी वफद की वतन वापसी के फौरन बाद ईरान के सदर का आज इस्लामाबाद का दौरा हुआ। यूं सालसी का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के साथ ईरान की आला सतह पर बातचीत जारी रहेगी। ख्याल किया जाता है कि लिबनान में जंगबंदी और ईरान की तरफ यूरेनियम की अफजूदगी इस बातचीत के भी कलीदी जूज रहेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि बातचीत और सिफारतकारी का ये सिलसिला कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा और इसकी बदौलत खित्ते में देरपा अमन और तरक्की की राह हमवार होगी। भारत समेत दुनिया भर के माशी इस्तेहकाम के लिए ऐसा होना बायस इत्मीनान होगा और इससे पूरी दुनिया की आबादी को राहत नसीब होगी। तबसरा खत्म हुआ, शब बखैर।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
4: आदाब सामीन, प्रोग्राम वादी की आवाज लेकर हम हाजिर खिदमत है। तमाम तारीफें उस रब कायनात के लिए है जो दिलों के हाल जानता है, जो हर शक, जो हर अश्क को देखता है, اور ہر قربانی کا صلہ دیتا ہے۔ درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں وہ دین دیا جس کی بنیاد حق، انصاف اور صبر پر ہے۔

आज सात मुहर्रम अल हराम है। आखिर सात मुहर्रम क्या है? सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब करबला की सरजमी पर जुल्म का दायरा और तंग किया गया। वो दिन जब नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके काफले पर पानी बंद कर दिया गया। फुरात जो बहता था सबके लिए, वो अब नवासाए रसूल के लिए रोक दिया गया। कैसा अंधेरा था, कैसा जुल्म था कि वो काफला जो मदीने से सिर्फ दीन बचाने निकला था, उसके मासूम बच्चों तक को प्यासा रखा गया। अली असगर जो माँ की गोद में तड़प रहा था, सकीना जो बार बार पानी मांगती, कासिम, मोहम्मद, अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सब प्यासे थे, सब बेहाल, और उनके दरमियान हुसैन अलैहिस्सलाम जो अपने रब की रजा में राजी थे। सामीन, आप तसव्वुर करें, एक खीमा जहां बच्चों की सिसकियां गूंज रही हो और एक माँ अपने लखते जिगर को पानी के कतरे के लिए तरसता हुआ देख रही हो। सात मुहर्रम को जब यजीदी फौज ने पानी बंद किया तो सिर्फ प्यास नहीं बंद हुई, इंसानियत का गला घोंटा गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम आज भी वफा की अलामत के तौर पर याद करते हैं, इसी दिन से फुर्रात के किनारे अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो गए। अब्बास अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने पानी को देखा, मशकीजा भरा, मगर खुद नहीं पिया। वो अपने लिए नहीं, बीबी सकीना अलैहिस्सलाम के लिए आए थे। उनके हाथ कट गए, मशकीजा टूट गया, मगर वफा सलामत रही। कुर्बानी दी लेकिन गैरत और वादा न तोड़ा।

फिर भी सिर्फ जिक्र खुदा। सात मुहर्रम हमें ये सिखाता है कि ईमान सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने, हक पर कायम रहने और असूलों की हिफाजत करने का नाम है। करबला का हर लम्हा एक पैगाम है। ये पैगाम सिर्फ रोने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए है। हम अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं तो हमारे कॉल ऑफ फैल में सच्चाई होनी चाहिए। हमारा दिल नर्म मगर इरादा मजबूत होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम हर उस रास्ते से बचें जो हमें यजीदी सोच की तरफ ले जाए। सामीन, आज के दौर में हम करबला को कैसे जिंदा रख सकते हैं? हमें सच बोलना होगा, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी और कमजोरों का साथ देना होगा। हमें अपने बच्चों को वफादारी, सच्चाई और कुर्बानी का सबक देना होगा ताकि वो भी हुसैनी किरदार के अमीन बने। आज का मुसलमान अगर वाकई करबला से सबक लेता है तो वो कभी भी किसी बातिल ताकत के आगे झुक नहीं सकता। अब आइए जरा लम्हे भर के लिए आंखें बंद कीजिए और उस खीमे का तसव्वुर कीजिए जिसमें अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास पर बीबी रुबाब के आंसू गिरते हैं, जहां बीबी सकीना अलैहिस्सलाम बार बार सवाल करती है, बाबा पानी कब मिलेगा? और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोशी से अपनी नन्ही बच्ची के बाल सहलाकर कहते हैं, बेटी सब्र करो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। ये कोई दास्तान नहीं, ये हकीकत है जो करबला की गर्म रेत पर लिखी गई। जरा सोचे, एक माँ जो अपने बच्चे को गोद में लेती है, उसके लब खुश्क है, जिस्म तप रहा है, आंखों में जिंदगी की रोशनी मद्धम हो रही है और माँ के पास देने को कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज है, सब्र। और वो भी ऐसा सब्र जो कयामत तक दुनिया को हैरत में डाल दे। क्या आज की माँ ऐसा सब्र कर सकती है? क्या कोई बाप अपने बच्चे को प्यास से मरता देखकर भी अल्लाह की रजा में राजी रह सकता है? मगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये सब किया। रुबाब अलैहिस्सलाम, ज़ैनब अलैहिस्सलाम, लैला अलैहिस्सलाम, उम्मे कुलसुम, सब ने ये दुख सहा, लेकिन ईमान की चोट को कबूल न किया। और वो मंजर जब अब्बास अलैहिस्सलाम का लाशा लाया गया, हुसैन का सहारा, भाई, अलमदार, वो जिस पर बच्चों को उम्मीद थी, वो जब जख्मी हालत में वापस आए तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मेरी कमर टूट गई अब्बास। ये वो जुमला था जो सुनकर फरिश्ते भी रो दिए होंगे। हुसैन अलैहिस्सलाम की ताकत था अब्बास अलैहिस्सलाम और वो भी कट गया। लेकिन वाह रे वफा, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम वापस आए तो पानी नहीं लाए मगर गैरत का दामन भीगने न दिया। एक और लम्हे का तसव्वुर करें जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे में दाखिल होकर बच्चों को देखते हैं, वो बच्चे जिनकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ खालीपन है। जब वो बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हैं और दोनों की आंखों में एक सवाल होता है, क्या हमने कुछ गलत किया कि हमें ये दिन देखने पड़े? मगर वो जानते थे ये कोई सजा नहीं, ये तो कुर्बानी का मैदान है। यहाँ कदम कदम पर तारीख लिखी जा रही है। यहाँ हर आह, हर आंसू, हर शहादत कयामत तक मजलूमों के लिए रोशनी बनेगी। फिर वो लम्हा जब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने मैदान की इजाजत मांगी, हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटे को सीने से लगाया, पेशानी चूमी और मैदान की तरफ रुखसत किया। और जब अली अकबर अलैहिस्सलाम के नेजे खाकर गिरने की आवाज आई, हुसैन अलैहिस्सलाम खुद भाग कर पहुंचे, बेटे के लाशे पर झुक कर कहा, बेटा तुम्हारे बाद जिंदगी का क्या मतलब रह गया? कैसा दिल था हुसैन का जो बेटे की लाश उठाकर भी शुक्र अदा कर रहा था। और जरा सोचे, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद अली असगर अलैहिस्सलाम को लेकर मैदान में गए, नेजे, तलवारें, जालिम फौज और नरमी का पैकर हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ इतना कह रहे थे, ये मेरा 6 माह का बेटा है, इसे पानी दे दो, अगर मुझे दुश्मन समझते हो तो इस मासूम पर रहम करो। और फिर एक तीर चलता है जो अली असगर अलैहिस्सलाम की गर्दन से गुजर जाता है। हुसैन उसे अपने हाथों में लेते हैं, खून आसमान की तरफ उछालते हैं और फरमाते हैं, परवरदिगार अगर तू राजी है।

0: हम सिर्फ मजालिस में हाजरीन नहीं बल्कि हुसैनी काफले के राही बनेंगे। हम सच बोलेंगे, मजलूम का साथ देंगे, झूठ से नफरत करेंगे और जालिम के खिलाफ खड़े होंगे। हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देना सिर्फ आंखों के आंसुओं से नहीं, किरदार की तब्दीली से मुमकिन है। या अल्लाह, हमें वो दिल दे जो हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से लबरेज हो, वो जुबान दे जो ज़ैनब अलैहिस्सलाम की जुर्रत से बोले, और वो किरदार दे जो अली और फातिमा की पाकीज़गी का आईना हो। ऐ रब्बे करीम, हमें ऐसा इंसान बना कि जब कयामत के दिन हुसैन अलैहिस्सलाम हमें देखे तो पहचान ले, ये मेरा उम्मती है, ये मेरे रास्ते का मुसाफिर है, मेरे पैगाम का मुहाफिज है। या अल्लाह, हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमा और उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर। हमें ऐसा इंसान बना जो वक्त आजमाइश में हक पर कायम रहे और जो जुल्म के आगे न झुके। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: वो

स्वामी ने एक जरूरी सूचना सुनिए। माता रानी के आशीर्वाद से वार्षिक चंडी माता की यात्रा चनोद बदरवा से शोगली टॉप शिव गली दुडू बसंतगढ़ के लिए प्रारंभ होने जा रही है। यात्रा 26 जून 2026 को सुबह 7:30 पर प्राचीन मंदिर चनोद से शुरू होगी और 30 जून को वापस बदरवा पहुंचने के साथ संपूर्ण होगी। यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए हर पड़ाव पर लंगर और रात को ठहरने का इंतजाम है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने साथ कंबल, गर्म कपड़े, छाता, टॉर्च और अन्य जरूरी सामान अवश्य लेकर जाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इस कॉन्टैक्ट नंबर पर 9906182626। कॉन्टैक्ट एक बार फिर नोट कर लीजिए, 9906182626। सूचना समाप्त हुई। सामिन आप सुन रहे हैं गद्दी मौसीकी। आइए अब सुनते हैं गिरधारी लाल और साथियों की आवाज़ में लोकगीत।

समीन आप सुन रहे हैं गद्दी मौसीकी, ये आकाशवाणी बदरवाह है एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन थोड़ी ही देर में ठीक 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9 और रात 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी।

मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ

0: सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम,

0: टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली

0: माही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है, वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज, एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cyber security to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to

0: पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के आईएएस के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानिब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते हुए रोल को यह कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज केटी थॉमस को समाजी काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूथी और प्लेबैक गुलुकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबू सोरेन को बादजमर्ग पद्म भूषण दिया गया है। 57 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनमें क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार आर माधवन और प्रसार भारती के साबिक सीईओ शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। अदाकार सतीश शाह को बादजमर्ग पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत एनिनो की वजह से कमजोर मॉनसून के इम्कान असरात से निपटने की खातिर किसानों की मदद के लिए पेशगी तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क में अब तक 43% कम बारिश हुई है और जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने का इम्कान है।
2: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को दालों और मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को फरोग देने का मशवरा है, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और सख्त मौसम में भी उनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासतों के साथ तालमेल में साइंसी तरीक़ेकार फसलों की बरवक्त मनसूबाबंदी और जिला सतह की तैयारी को मुस्तहकम किया जा रहा है। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक लाहिरी ने आज कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की मजमूई तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। डॉक्टर लाहिरी ने यह बात नई दिल्ली में तजारत पर नजर रखने वाली सिमाही रिपोर्ट का ताजा एडिशन जारी करते हुए कही। नायब चेयरपर्सन ने मजीद कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की बरामदात 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि दरामदात में 6.5% का इजाफा दर्ज किया गया। मगरबी एशिया की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहरान आर्जी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम होगा। आज जारी करदा रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर अद्वियात की तजारत पर जोर देते हुए आलमी तजारत में भारत के रोल का तज्जिया पेश किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में शामिल हुए उम्मीदवार अब सरकारी

CUET पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। NTA के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 के कोलकाता बाव बाजार बम धमाका केस में उम्र कैद के एक मुजरिम की कबल अज वक्त रिहाई के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल हुकूमत की उस दरखास्त पर अबूरी राहत दी जिसमें हाई कोर्ट के 5 जून के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था जिसके तहत 77 साल मुजरिम मोहम्मद राशिद खान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद राशिद खान को भी नोटिस जारी किया। रियासत की जानिब से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने इस मामले में इस्लाही नजरिए का गलत इतलाक किया क्योंकि इस धमाके में 70 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। मोहम्मद राशिद खान के वकील MR शमशाद ने कहा कि उनके मुवक्किल 33 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं और एक शरीक मुलजिम को 2014 में इस सिलसिले में रियायत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहदा किया कि खान का रोल मुख्तलिफ था और उन्हें धमाकों का मास्टरमाइंड करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा बैतमुख और सनत और कानकनी के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया दोस्ती के तहत जारी प्रोजेक्ट में नुमाया पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इन मंसूबों में शामिल मुख्तलिफ टीमों के साथ जारी काम की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा ने प्रोजेक्ट के मकाम पर भारत और मंगोलिया के वर्करों के साथ बातचीत की। उन्होंने इन मुश्किल हालात में इस तरह के अहम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में उनकी मेहनत लगन और अज़्म को सराहा। वजारत खारजा ने आज कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। नई दिल्ली में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस हादसे में 66 अफराद जख्मी भी हुए जिनका इलाज अभी चल रहा है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत नामे पर दस्तखत होने के बाद अब तक भारत से वाबस्ता 11 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस से गुजर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बाकी भारतीय परचमबरदार जहाज भी जल्द ही इस रास्ते से गुजरेंगे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से मुतालिक बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए तर्जुमान ने कहा कि ऐसे बयानात पाकिस्तान की अपनी नाकामियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की एक लायानी कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और इन दावों को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में एक जामे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मशक के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर बेस कैंप के पूरे अहाते में तलाशी और इलाके को महफूज बनाने की कार्रवाई अंजाम दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और जामे निगरानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके साथ ही अमरीका अब नाए हुरमुज में पहरी जहाजों की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी करेगा और माली रियायतें फराहम करेगा, ताहम ये सब सख्त अमरीकी निगरानी के तहत होगा। सोशल मीडिया पर जारी एक तफसीली बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की क्यादत ने जारी सिफारती मुज़ाकरात में अहम रियायतें दी हैं जिनका मकसद मगरबी एशिया में तवील कशीदगी के बाद एक जामे अमन फ्रेमवर्क कायम करना है। ताहम व्हाइट हाउस के इस बयान पर ईरान की हुकूमत ने फौरी एतराज किया और न्यूक्लियर निगरानी के दायरेकार के बारे में इख्तिलाफ जाहिर किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई ने वाजे किया कि ईरान ने मखसूस न्यूक्लियाई तनसीबात पर बैन अल-अक़वामी एटमी तवाना एजेंसी की निगरानी कबूल नहीं की। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। दिल्ली NCR में मौसम में अचानक शदीद तब्दीली देखी गई क्योंकि खित्ते में तेज बारिश धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल रही थीं। IMD के मुताबिक कौमी राजधानी में कम से कम दर्जे हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत
38.4 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब आईएमडी ने कहा कि 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार मशरकी

0: मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मैच में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने रिवायती हरी पाकिस्तान को 3-4 गोल से हरा दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला यह मुकाबला इस टूर्नामेंट के सबसे अहम मुकाबलों में से एक था। लंदन मरहले के दौरान भारत जुमेरात को इंग्लैंड का सामना करेगा और 26 जून को एक बार फिर पाकिस्तान से खेलेगा। इसके बाद 28 जून को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले के साथ अपना दौरा मुकम्मल करेगा। आज फीफा आलमी कप में ग्रुप मरहले के तहत मुख्तलिफ अहम मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप के में हाउस्टन में रात 10:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। वहीं ग्रुप एल के तहत देर रात 1:30 बजे बोस्टन में इंग्लैंड और घाना आमने सामने होंगे। बाद में सुबह सवेरे 4:30 बजे टोरंटो में क्रोएशिया का मुकाबला पनामा से होगा। जर्मनी के शहर सूल में जारी आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत के लिए आज का दिन भी शानदार रहा और उसने मजीद 3 तमगे हासिल किए, जिनमें चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। शिवा नरवार ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा जीता, जबकि युग प्रताप सिंह राठौर ने भी इसी मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निमटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात की निकास से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी भद्रवाह FM 101 MHz पर समीन रात के ठीक 9:30 हुए हैं। अब समाप्त कीजिए सराजी मुशायरा। मुशायरे में शिरकत कर रहे शौरा हजरात के इसमें ग्रामी हैं जगदीश चंद्र शर्मा, पंचम सिंह, अजय राणा और अशोक कुमार।
2: आज आकाशवाणी भद्रवाला सराजी मुशायरो पेश करी रो छे। जन शौरा हजरात ई मुशायरे में हिस्सों गिनी रहो छे। तरह ते नाम एम्बेरी छे। श्री अशोक कुमार शर्मा पारस जी साकना कुलहांड, श्री अजय राणा जी साकना शामठी चाकाकुंडी, श्री पंचम सिंह जी साकना जठेली, आऊं जगदीश चंद्र शर्मा साकना जठेली। आऊं दावत दें छे श्री अशोक कुमार पारस जी किन्तन अपनों कलाम पेश करूं। श्री अशोक कुमार पारस जी,
3: बहुत बहुत धन्यवाद। पेश जी सराजी कविता कथति कथाणी। कथति कथाणी आज लोक बड़ा छे, कथति कथाणी आज लोक बड़ा छे, कैंसी भी हदा तगर एन चलेगा छे। कथति कथाणी आज लोक बड़ा छे, कैंसी भी हदा तगर एन चलेगा छे। अपने इशारे पुट सारणी नचा छे, अपने इशारे पुट सारणी नचा छे, चलनो बोई अग्रेता एन पतेरा छे। कथती कथाणी अज लोक बड़ा छे, कैंसी भी हदा तगर एन चलेगा छे। दूर लाई दूर ती हरियाली भी हैरान छे, दूर लाई दूर ती हरियाली भी हैरान छे, खाई ता मलाई होरे आंगोली चटा छे। कथती कथाणी आज लोक बना छे, कैंची भी हदा तगर एन चलेगा छे। जे रोटी भोई एंड ते ही खवा छे, जे रोटी भोई एंड ते ही खवा छे, जे न पुगे ते केला ढंकड़ा लवा छे। कथती कथाणी आज लोक बना छे, कैंची भी हदा तगर।

0: चैन
1: चलेगा।
0: चलेगा। अच्छे
1: बड़ा
0: बहुत
1: रोड़ो,
0: बहुत
1: बहुत
0: अच्छा, बहुत
1: बहुत
0: अच्छा।
1: शुक्रिया, धन्यवाद। दुख दें चे होरे नुकसान भी पुजान छे,
0: जी,
1: दुख दें चे होरे
0: नुकसान
1: नुकसान
0: भी
1: भी
0: पहुंचा
1: पुजान
0: छे।
1: छे, अमी आऊं करता अपनी जिंदगी गवां छे,
0: वाह
1: कथा ती कथानी आज लोक बना छे, कैंची भी हदा तगर एन
0: एंड
1: चलेगा
0: चलेगा,
1: छे।
0: चलेगा जी
1: बहुत अच्छा,
0: जी
1: धन्यवाद। उल्टो पुल्टो करता अरमान चुका छे,
0: उल्टो बुल्टो करता।
1: उल्टो पुल्टो करता अरमान चुका छे, सीधी सीधी बात एन अपनी रवान छे, कथा ती कथानी
0: यानी
1: आज लोक बना
0: लोग बना
1: छे,
0: चाहिए,
1: कैंची भी हदा तगर एन चलेगा
0: चलेगा
1: छे।
0: जी।
1: अपना ला हर एक राज भी सपा छे, अपना ला हर एक राज भी सपा छे, अपने ही अपने नेड़े भी नगा छे, कथति कथानी अज लोक बना छे, कैंची भी हदा तगर एन चलेगा छे।
0: बड़ो रोड़ो,
1: बहुत
0: बड़ो
1: अच्छा,
0: रोड़ो।
1: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रोटी खवाई ता फिरी रंग भी अरा छे,
0: रोटी खवाई तो फिर
1: रंग
0: रंग भी आ रहा है।
1: भी, रोटी खवाई ता फिरी रंग भी अरा छे,
0: वाह
1: देश निकालो दी ता घर भी त्रवा छे,
0: वाह,
1: कथति कथानी आज लोक बना
0: अच्छे
1: छे,
0: आवे
1: कैंची
0: केलाका
1: भी हदा तगर एन
0: जी,
1: चलेगा
0: एंग बसलो
1: छे।
0: आवे केलाका।
1: रोटी खवाई ता फिरी रंग भी हैरा छे,
0: बड़ो रोड़ो
1: रोटी खवाई ता फिरी
0: फिर
1: रंग
0: रंग
1: भी
0: भी
1: हैरा
0: आ रहा
1: छे,
0: जी,
1: देश निकालो दी ता घर भी त्रवा
0: घर भी त्रवा
1: छे,
0: छे। बड़ो
1: कथति
0: रोड़ो,
1: कथानी
0: क्या
1: आज
0: बात
1: लोक
0: क्या बात,
1: बना छे,
0: एंड
1: कैंची भी हदा तगर एन
0: एंड
1: चलेगा
0: चलेगा जी।
1: छे। हदला भी बीरे जला एन निसीगा छे,
0: अदला विजिरे जला
1: जला
0: एन
1: एंड बीरे
0: निसीगा,
1: निसीगा छे,
0: हदला भी बीरे जला एन
1: निसी
0: निसीगा
1: गां
0: छे,
1: छे, कथ कु कथ जुइंता फिरी पस्तां छे, कथति कथानी आज लोक बड़ा छे, कैंची भी हद्दा तगर एन
0: एंड
1: चलेगा
0: चलेगा जी।
1: छे।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
1: गुस्सो
0: बहुत अच्छा।
1: कर छे एकी होरे जेर भी अणा छे, गुस्सो कर छे एकी होरे जेर भी अणा छे, अपू मजी लड़ छे दोग भी बना छे, कथति कथानी आज लोक बड़ा छे,
0: बड़ो
1: कैंची भी हद्दा तगर एन चलेगा
0: चलेगा जी,
1: छे।
0: बड़ो रोड़ो, बड़ो रोड़ो।
1: बहुत शुक्रिया। सना जैन पीछे होरे भी पुआ छे,
0: साना जड़
1: वाह
0: पीछे
1: पीछे
0: और
1: होरे
0: होरे
1: भी
0: भी
1: पुआ
0: पहुंचे,
1: छे, सना जैन पीछे ते होरे भी पुआ छे,
0: पहुंचे।
1: ओतरे हरिद्वार ती बत भी हरा छे,
0: वाह वाह
1: कथा ती
0: वाह,
1: कथानी अस लोक
0: लोग
1: बना
0: बना
1: छे,
0: चाहिए,
1: कैंची भी हदा तगर एंड
0: एंड चलेगा
1: चलेगा
0: चलेगा
1: छे।
0: जी।
1: मिठी कथ करता मन छे ठगा छे, मिठी कथ करता मन छे ठगा छे, जलती है दुपा एंड बता मात्रा छे, कथा ती कथानी आज
0: मान
1: लोक बड़ा
0: छे,
1: छे, कैंची भी हदा तगर एन
0: एंड चलेगा
1: चलेगा छे।
0: जी।
1: उल्ला इल्ला चुन ता पुराणियों पुणा छे, उल्ला
0: उल्ला
1: इल्ला
0: इल्ला
1: चुन
0: चुन
1: ता पुराणियों पुणा
0: पुराणियों,
1: छे, सिकने छे कोला उकाई मुकरी भी गा छे,
0: वाह वाह वाह
1: उल्ला इल्ला
0: वाह, मुकरी भी गां छे।
1: चुन ता पुराणियों पुणा छे, चिकने छे कोला उकाई मुकरी भी गा छे,
0: बिल्कुल,
1: कथा ती कथानी आज लोक बड़ा छे, कैंची भी हदा तगर एंड
0: एंड
1: चलेगा
0: चलेगा
1: छे।
0: जी।
1: मजबूर कर छे मी कथ भी जोआ छे, मजबूर कर छे मी कथ भी जोआ छे,
0: जी
1: समझाई पारस ता एंड रुशिगा छे,
0: वाह
1: कथा ती
0: वाह,
1: कथानी अज लोक बड़ा छे, कैंची भी हदा तगर एंड
0: एंड
1: चलेगा
0: चलेगा
1: छे,
0: जी।
1: अपने इशारे पुट सारणी नजा छे, चलनो बोई अगरे ता एंड पतेरा छे, कथा ती कथानी अज लोक बड़ा छे।
0: बहुत खूब,
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: खूब, बहुत खूब।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: अपनी दावत दें छे श्री पंचम सिंह जी, अपना कलाम पेश करन श्री पंचम सिंह जी।
1: शुक्रिया जनाब। मैनी कविता तो अनुमान छो शराबित जिंदगी, शराब दे पुछली खुशी मी
0: वाह
1: जनाब भी एले जोड़ने पहले तो एलमा भी एक मास लेना तो ब्योरो, तो एमने ती भी बड़ी रोड़ी कविता बुती हंसने दे देनी, तो मैंने भी अनुमान है नहीं रहा कि थोड़ा सुनो खुश मजाज देनी कविता छ।
0: बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा,
1: जो छो एक शराबी माँ छो जोई जान छी दुनियाई सारी में, जो छो
0: वाह
1: एक शराबी माँ छो
0: अच्छा,
1: जोई जान छी दुनियाई सारी में, और तेरे उठता हूँ गांछे ठेके उम्र तैली गुजारी में,
0: वाह वाह
1: और तेरे उठता हूँ गांछे ठेके उम्र तैली गुजारी में।
0: वाह,
1: कह मेरी एंग शराब में शिखी, शराब भी मिलते ठारी ठारी में, कह मेरी अच्छा
0: एंग में शराब शिखी,
1: अच्छा
0: शराब भी मिलते ठारी ठारी में, जैला आपू पीता मस्त बोते बाचोरी देते सारी में।
1: वाह वाह वाह,
0: कह मेरी एंग शराब में शिखी, शराब भी मिलते ठारी ठारी में, जला अपू पीता मस्त बोते बाचोरी देते सारी मी, बाचोरी देते सारी मी, और तेरा उठता हूँ गांछे ठेके उम्र ए मेरी गुजारी मी,
1: बहुत
0: और तेरा
1: बढ़िया जी,
0: उठता
1: बहुत
0: गांछे
1: बढ़िया, बहुत
0: ठेके उम्र ए मेरी गुजारी
1: गुजारी
0: मी। लागो के मेरी ये नशो जाने लागू।

0: पुतला दूर
1: दूर रहता।
0: रहता, अपनी इज्जत बढ़ा तू, दूध की जनियो खुराका खाएता सदा जवान रहा तू,
2: वाह जी वाह,
0: दूध की जनियो खुराका खाएता सदा तंदुरुस्त रहा तू, जानती बाजी दीता आज मी, जानती बाजी दीता आज अकल ओशी सारी मी, जानती बाजी दीता आज अकल ओशी सारी मी, ओतर उड़ता हूँ गाते ठेके उम्र ए मेरी गुजारी मी, ओतर उड़ता हूँ गाते ठेके उम्र ए मेरी गुजारी मी, ते एंगुद मैंने की था शुक्रिया।
2: बहुत बढ़िया जी,
3: और हम दावत दें छे श्री अजय राणा जी की तरह अपनों कलाम पेश करूँ। श्री अजय राणा जी,
2: बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। मैंने कविता छी सराजोपुड़, अपने सराजोपुड़
1: जी। अर्शाद,
2: कदे तजे ओ प्यारा मित्रा, कदे तजे ओ प्यारा मित्रा, मैंने सत सराजे हो, हरे तू मैंने मुल्क होते सजना रंग रवाजे हो। कदे तजे ओ प्यारा मित्रा, मैंने सत सराजे हो, हरे तू मैंने मुल्क होते सजना रंग रवाजे हो। सादो लानो सादो रानो,
1: सादो लानो सादो रानो,
2: सादो लानो सादो रानो, सादिया गल्ला किरनिया हो, बोल जे कोड़े दुश्मन जोए घुट्टू बटी सब जिरनिया हो। जम्मू बदलो शिमलो बदलो, जम्मू बदलो शिमलो बदलो, बदलो न मैनो सराजे हो। कदे तजे ओ प्यारा मित्रा, मैंने सत सराजे हो। पूजंत एथेरा देवी देवते, पूजंत एथेरा
1: देवी
2: देवते, लावंत कोड ते जात्रा हो, प्रोने चारी बड़ी निराली, लख करंत एथ खातरा हो। पूजंत एथेरा देवी देवते,
0: देवी देवते,
2: लावंत कोड ते जात्रा हो, प्रोने चारी बड़ी निराली, लख करंत एथ खातरा हो, सुख ना देता देवते मनाने।
1: अच्छा,
2: सुख ना देता
0: देवते
2: मनाने, दिलड़ू मनान नराजे हो। कदे तजे ओ प्यारा मित्रा, मैंने सत सराजे
0: हो।
2: फुलड़ू फुलंत रंग बिरंगे, फुलड़ू फुलंत रंग बिरंगे, प्यारी प्यारी धारा हो। फुलड़ू फुलंत रंग बिरंगे, प्यारी प्यारी धारा हो, चंद्रमो सत चंद्रेनी हाय लुद्र गंगा ती धारा हो। भोले शंकर पार्वती जी अपने आप विराजे हो, कदे तजे हो प्यारा मित्रा, मैंने सत सराजे हो। असाव सराज जो छो सो रामबन डिस्ट्रिक्ट आता पोगल आता गिंदा ते किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट दे एथ कंदुवाड़े तर छो ते तेतपुर एक बंद छो। नील मैनो न्यारो पोगल, नील मैनो न्यारो पोगल, शाम रूप के शुवाने हो। नील मैनो न्यारो पोगल, शाम रूप के शुवाने हो, हंस रूप हाय रामबन मैनो, पखरू भोंत हैराने हो। हेरी हेरी सारो डुगर जिये चंद्र भागा साजे हो, कदे तजे हो प्यारा मित्रा,
1: मैंने सत सराजे हो।
0: मैंने सत सराजे हो।
2: पंच पंडम ते कुंती मैया, पंच पंडम ते कुंती मैया, भोंते कदे कुंतवाड़े हो, डोडे काश्ती राजगढ़े तेने, किले भी गजबत गाड़े हो। राम जी राजे राम बनाते, राम जी राजे राम बनाते, अर्जुन कृष्ण सराजे हो, कदे तजे हो प्यारा मित्रा, मैंने सत सराजे हो। ठंडे मिठे पानी ओ सजना, ठंडे मिठे पानी ओ सजना, छंबे छंबे पीने हो, खाने मिठे चलांदरुओ सजना, मजे ते हरछे जीने हो। ठंडो बात ते मिठिया निद्रा, ठंडो बात मिठिया निद्रा, बिसरत काम ते काजे हो, कदे तजे हो प्यारा मित्रा, मैंने सत सराजे हो।
0: बड़ो रोड़ो, बड़ो रोड़ो
2: जी। पूजा आऊं हेरा अपने सराजे, पूजा आऊं हेरा अपने सराजे, समझी एक भगवाने हो। पूजा आऊं हेरा अपने सराजे, समझी एक भगवाने हो, मेहमा ये थी कई बखाने, समरथ रही न राने हो। पूजा आऊं हेरा अपने सराजे, समझी एक भगवाने हो, मेहमा ये थी कई बिखाने, समरथ रही न राने हो। सूर में एथेरा कतरे ही भुए, सूर में एथेरा कतरे ही भुए, कतरे ही राजे राने हो। कदे तजे हो प्यारा मित्रा, मैंने सत सराजे हो, हेरे तू मैंने मुल्क होते सजना रंग रवाजे हो।
3: धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत खूब। और यहाँ जगदीश चंद्र शर्मा मुशायरा पेश कर, जे ते अनुमान छो नशो, मता कोई तू नशो करित।
1: अच्छा,
3: मता कोई तू नशो करित,

0: एंगछी बड़ी बीमारी,
1: अच्छा
0: एनी नशे हेरा लोको दुनिया कतरी मारी।
1: वाह जी बिल्कुल।
0: लोक पुआतम आदर कहते,
2: लोक पुआतम आदर,
0: आदर कहते जी। लोक पुआतम आदर कहते बहुत तो जला ब्याह।
1: अच्छा
0: लोक पुआतम आदर कहते बहुत तो जला ब्याह, खिर करो बहुते उस मुंडो आऊं।
1: अच्छा
0: पुठा बीच तो सुना, खिर करो बहुते उस मुंडो आऊं तो पुठा बीच तो सुना।
1: बेहतरीन मंजर कशी जी।
0: होशी साथी रहे थी यारो, कैंस तो ना छो करनो बिसा। होशी साथी रहे थी यारो, कैंस तो ना छो करनो बिसा। फेफड़े शाड़ी टीबी बाणी, फेफड़े शाड़ी टीबी बाणी, बोंछी जान तबा।
1: बिल्कुल
0: मैं तो कह तू नशो करे थे अंशी बड़ी बीमारी, एनी नशे हेरा लोको दुनिया कैतरी मारी।
1: बड़ा रोड
0: गयत ना ए पासे यारो, जेछप जान प्यारी। दूध की उखानते लोग पुराने, दूध की उखानते लोग पुराने, ताकत बोंती जाना मा। दूध की उखानते लोग पुराने, ताकत बोंती जाना मा। सीधी सादी पीत तरोटी, बनती तेला धामा मा। सीधी सादी पीत तरोटी, बनती तेला धामा मा। ऋषि गाणो घरतन साथी, तो चले गाणो नाना मा।
1: वाह वाह वाह,
0: ऋषि गाणो घरतन साथी, तो चले गाणो नाना मा। लम्मो कुर्तो सुथन तंबी, फर्क नाई ती शाना मा।
1: वाह वाह वाह,
0: ते क्योंगे इस जमाने जाने, दुखछों मी बड़ो भारी। ते एनी नशे हेरा लोको दुनिया कतरी मारी। घर घर बाठी लाइता लोग, लगे शराब बनाने।
1: अच्छा
0: घर घर बाठी लाइता लोग, लगे शराब बनाने। गंदे कम्मा करता फिरी, लगे पैसे कमाने। गंदे कम्मा करता फिरी, लगे पैसे कमाने। ते कतरे बंद छे जेलन मा, कतरे बंद छे थाने। कतरे बंद छे जेलन मा, कतरे बंद छे थाने। बुती बीमारी द्राबा मा एंग, गे चले फिर गाने। बुती बीमारी द्राबा मा एंग, गे चले फिर गाने। ते बचता रायत निकड़े बोडे, करियत सब तैयारी। एनी नशे हेरा लोको दुनिया कतरी मारी। सबकी अच्छी लां तो छे आऊं, ना करा मनमानी। सबकी अच्छी लां तो छे आऊं, ना करा मनमानी। एनी नशे बचपन माही, छी खत्म जिंदगानी। एनी नशे बचपन माही, छी खत्म जिंदगानी। सुनियत लोको कातू सारे, सुरछे तुए सुनानी। पीता पियालो जहर तो यारो, फूक छिनी सी गानी। पीता पियालो जहर तो यारो, फूक छिनी सी गानी। नशे कैरी कैरी लोको, गांछी सुखी नाड़ी। एनी नशे हेरा लोको दुनिया कतरी मारी। दुनिया सारी तंग भी गेव छी, निकले बुढ़े खंडे। मनुत ना मिठियारी जला, बच्चे फिरी डंडे। घरा शाड़ा सारे बिकी, बिकी गे फिरी बंदे। बुरे कम्मा त्राय सुटा यारो, कैरा रुपड़े धंधे। ना करिए तू एने कम्मा, ची छी अंग निकारी। एनी नशे हेरा लोको दुनिया सारी मारी। जीवने ते पासे भी कोई एक दी लोको कैरियत ख्याल। जीवने ते पासे भी कोई एक दी
1: बहुत जरूरी
0: लोको कैरियत ख्याल। नशो करने बाले तो छो यारो बुरो हाल। छाल भी मारियत हेरता लोको, अगरे छो डुगो नाल। ते दूरे रायत अला तू, न त फसी गण छो फाल। छाल भी मारियत हेरता लोको, अगरे छो डुगो नाल। दूरे रायत अला तू मीन्स शराबला। दूरे रायत अला तू, न त फसी गण छो फाल। जगदीशा सुपसाने बिशा, नाम बनिया शिकारी। अणी नशे हेरा लोको दुनिया सारी गाली। न माता कोई तू नशो करित एंची बड़ी बीमारी, एनी नशे हेरा लोको दुनिया सारी मारी।
1: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
0: श्री अशोक कुमार पारस जी एक कविता तुम हाव सुना।
1: धन्यवाद। मैंने कविता छी फुल तो कर, फुलड़ते बारी फुल तो कर। सो दो पूरो तुल तो कर, सोदो पूरो तुलतो कर बेफिक्रो तू झुलतो कर, सोदो पूरो तुलतो कर बेफिक्रो तू झुलतो कर, गठड़ी हल्की रख मित्रा, गठड़ी हल्की रख मित्रा, मिलता जुड़ता चलतो कर, सोदो पूरो तुलतो कर। एतरे राज सपांचे क्यों, एतरे राज सपांचे क्यों, कैंसी बख्ता खुलतो कर, सोदो पूरो तुलतो कर। बिश्ता बिशी गानो छे, बिश्ता बिशी गानो छे, थारी पुठा हलतो कर, सोदो पूरो तुलतो कर। एकी बुट्टो पानी दे, एकी बुट्टो पानी दे, हरे हरता फुलतो कर, सोदो पूरो तुलतो कर, बेफिक्रो तू झुलतो कर, सोदो पूरो तुलतो कर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सारे सराजन के खातर एक एक खास शेर, जल्बी अपने सराजी बोंद, जल्बी अपने सराजी बोंद, हंसते खेड़ते राजी बोंद, हंसते खेड़ते राजी बोंद।
0: आऊं दाव दें जे श्री अजय राणा जी की एक कविता एन पेश करूं। श्री अजय राणा जी,
2: आऊं कविता एक देश भक्ति दे बारे में दसवीं तो सुनाई रुचे। अकल केरा किच सुना ओ हिंदियो, अकल केरा किच सुना ओ हिंदियो, छो भारत देश महान है। अकल केरा किच सुना ओ हिंदियो, छो भारत देश महान है, प्यारी ये थी मिट्टी ओ सजना, छो प्यारो हिंदुस्तान। बुद्ध कश्यप गुरु नानक भुए, बुद्ध कश्यप गुरु नानक भुए, भुए राम कृष्ण भगवाने, बेले बेले जरम घिनियन, लगे हो कष्ट कटाने, मथे टिको धूड़ा तो लात, मथे टिको धूड़ा तो लात, भोई हैरा कल्याणे, उज्जवल भूमि मैंने मुल्क होती, जोंचा हिंदुस्तान। अकल केरा किच सुना ओ हिंदियो, छो भारत देश महान। भागीरथी हरा गंगा मैया, भागीरथी हरा गंगा मैया, लगी सूचो जल चलाने, पापी नरकी जीव जंतु लगी स्वर्गे पजाने, कैलाश खड़ो हरा पैरो देई, कैलाश खड़ो हरा पैरो देई, हिमालया छो निगे बाने, हिम्मे साथी खड़ूरे पर्वत लगे वो शीश झुकाने, अकल केरा किच सुना ओ हिंदियो, छो भारत देश महाने, प्यारी ये थी मित्तियो सजना, छो प्यारो हिंदुस्ताने। जुलम सितम हाय कतरेई झल्लीता, जुलम सितम हाय कतरेई झल्लीता, मिली या आजादी, तिरंगे झंडे अपने हैरा, हरदम करी मफादी, एथे रंगो मा रंगा तू,
3: एथे रंगो मा रंगा तू।
2: जुलम सितम हाय कतरेई झल्लीता, मिली या आजादी, तिरंगे झंडे अपने हेरा, हरदम केरी मफादी, एथे रंगो मा रंगा तू, न कराए थी बर्बादी, पर स्वार्थी बना न एतरे, रात सदा सत्यावादी, तिरंगे अपने खून दितो, तिरंगे अपने खून दितो, हिंदू सिखे मुसलमाने, मथे टिको धूड़ा दो लाथ, भोई हरा कल्याणे, उज्जवल भूमि मैंने मुल्क होती, जोंचा हिंदुस्तान। राजगुरु ते तेन दे साथी, राजगुरु ते तेन दे साथी, भगत सिंह सरदारे, देशों ते खातिर फांसी लगी गे, दईता अपने द्वारे। राजगुरु
0: सुखदेव भगत सिंह
2: जी, राजगुरु ते तेन दे साथी, भगत सिंह सरदारे, देशों ते खातर फांसी लगी गे, दईता अपने द्वारे, भक्ति मात्र भूमिय थी केरी तेने, भक्ति मात्र भूमिय थी केरी तेने, रहे सदा कुवारे, जालियां वाले बागो ते तू बिसरत की अत्याचारे, मजबे पुड़ अज लगुचत की, शहीदत खून बहाने, मथे टिको धूड़ा दो लात, भोई हरा कल्याणे, उज्जवल भूमि मैंने मुल्क होती, जोंचा हिंदुस्तान। ग्रंथ अंजील कुरान पढ़ा, ग्रंथ अंजील कुरान पढ़ा, चाहे गीता ती पढ़ा पढ़ाई, ग्रंथ अंजील कुरान पढ़ा, चाहे गीता ती पढ़ा पढ़ाई, कैंची मजबो मानसी लिखड़ी, किरनी सजनों लड़ाई। ग्रंथ अंजील

0: कुरान पढ़ा चाहे
1: जी
0: गीता थी पढ़ा पढ़ाई, कैंची मजबो मां नछी लिखरी, सजनो किरनी लड़ाई,
1: लड़ाई।
0: की बनेत फिरी आतंकवादी, की बनेत फिरी आतंकवादी,
1: आतंकवादी।
0: की तुए गोली चलाई, की बनेत फिरी आतंकवादी, की तुए गोली चलाई, सुहाग उजाड़े कतरे ही तुए कु मुल्क होती दिशा बनाई, हिस्सो बब्बो मारी त पुत्रो दे छो न कह विधाने, उज्जल भूमि मैंने मुल्क होती जोचा हिंदुस्ताने,
1: हिंदुस्तान बहुत
0: अकल
1: बढ़िया
0: केरा कि छुना ओ हिंदियो, छो भारत देश महान है,
1: है। छो भारत
0: छो भारत
1: बहुत
0: देश
1: खूब,
0: महान है। बड़ो
1: बहुत
0: बड़ो
1: खूब।
0: बड़े
1: अजो
0: रोजा
1: खनो
0: धन्यवाद।
1: सराजी प्रोग्राम मणि मुकणे वालो छो, जणे शोरा हजरातें ए प्रोग्राम में हिस्सो घेनो छो। आउं तेरा तो नाम तुम्हें फेरी सुनाया, श्री अशोक कुमार पारस जी सगना कुलवाण वाले, श्री अजय राणा जी शामठी चाका कुंडीला, श्री पंचम सिंह जी जठलते, और आऊँ जगदीश चंद्र शर्मा भी जठलते रहने वालों। तमाम प्रोग्राम सुनने वाले लोगन जत्रे भी ऐसे प्रोग्राम सुन रो छे, ऐसे सारे टीम के तरफा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल।
2: अभी आप समाप्त कर रहे थे सराजी मुशायरा, ये आकाशवाणी भदरवाह है FM 101 MHz पर। समीन रात के ठीक 10 बजने वाले हैं। अब हमारी आज की मजलिस यहीं पर इख्तिताम को पहुंचती है। कल की मजलिस में इंशाल्लाह सुबह 7:51 पर इन्हीं मीटर्स यानी FM 101 MHz पर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।